श्रोताओं सुप्रभात, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 44 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम चिंतन। आलेख एवं वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का है।
1: मान और अभिमान दोनों एक ही तरह के उच्चरित शब्द हैं और इनके अर्थ भी लगभग समान ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, एकदम उल्टे अर्थ वाले हैं। आत्मसम्मान, आत्मगौरव के लिए प्रयुक्त होता है स्वाभिमान। ये एक पौरुषवादी शब्द है जो हमें जगाता है, प्रेरित करता है, कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जगाता है, हमारे आत्मबोध को पुष्ट करता है। और कितनी ही कठिन डगर हो, स्वाभिमान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, समाज के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। और जब हम अभिमान की बात करते हैं, ये हमें

0: पूरी तरह से अहं के मकड़ जाल में फंसा लेता है और धीरे धीरे मीठे जहर की तरह हमारा सब कुछ निचोड़कर समाप्त कर देता है और हम एक बेकार से प्राणी बनकर रह जाते हैं जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं होता। मनुष्य तीन ऋणों को लेकर जन्म लेता है। पहला होता है पितृ ऋण। हमारे जन्मदाता ने हमें जो शरीर दिया है हम अपने ही रूप स्वरूप की संतति देकर पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और स्वाभिमान पूर्वक सामाजिक संरचना के चक्र को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऋण होता है सामाजिक ऋण। हम जिस समाज में हैं उस समाज को अपने कौशल और विवेक बुद्धि से समाज सेवा करने की भावना से आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का स्वाभिमान होता है जो समाज के लिए काम आता है। हमारे ऊपर तीसरा ऋण होता है राष्ट्र ऋण। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं जिसके अन्न जल से पोषण प्राप्त करते हैं अपना अपने परिवार अपने समाज के विकास में सहयोगी बनते हैं उस राष्ट्र के अभिमान को जागृत रखना हमारा धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। इस राष्ट्र पर यदि किसी प्रकार का संकट है तो राष्ट्र को संकट से मुक्त कराने के लिए कई राष्ट्रभक्तों ने राष्ट्र के स्वाभिमान के वशीभूत होकर अपने आप को उत्सर्ग कर दिया है। ऐसा स्वाभिमान जो हमारे विवेक को प्रकाशित करता है, ये स्वाभिमान ही है जो हमें कठिन परिस्थितियों में डिगने नहीं देता। स्वाभिमान हमारी आन बान और शान का प्रतीक होता है, जबकि अभिमान हमें अहंग से ग्रसित करता है। ये मिथ्या है, ये हमें घमंड गर्व और अपने को श्रेष्ठ समझकर झूठा और दंभी बनाता है, अज्ञान के अंधेरे में ढकेल देता है। अभिमान न सिर्फ मानव का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी शत्रु है। इसीलिए अभिमान की ओर न जाकर हमें स्वाभिमान की ओर आगे बढ़ना होगा और विशेष करके अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखकर अपने देश को उन्नतशील बनाना और विवेकशील बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमें इस दिशा में सदैव विचार करना चाहिए कि हम कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। आलेख एवं वाचन स्वर शंकर कुमार चौधरी का है।
2: आजुक कृषि चर्चा शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन के आधुनिक और उन्नत कृषि यंत्रक व्यवहार करवाक चाही, तख नहीं मनोनुकूल उपजा लौ सकब। कृषि यंत्रक माध्यम से खेती कैला से श्रमक बचत होइत अछि, पूंजीक बचत होइत अछि, समयक बचत होइत अछि इत्यादि कतेको प्रकारक हमरा लोकन के लाभ होइत अछि। कृषिक व्यवहार कुशलतापूर्वक यंत्र के हमरा लोकन के चलेबाक चाही, तक नहीं एकर सभक उपयोग क सकब। सब कृषि यंत्रक अपन अपन महत्व होइत अछि, जाहि में से किछ मुख्य कृषि यंत्रक चर्चा एखन क रहल छी, जेना रीजर, मोल्ड बोर्ड, हॉर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर इत्यादि। रीजर से खेत में क्यारी ओ आरि बनाओल जाइत अछि, जेना कुसियार के क्यारी, आलू के आरि आदि। अय फसिल सबके हमरा लोकन रीजर से काज लो सकैत छी। रीजर दू प्रकारक होइत अछि, सीनियर रीजर ओ जूनियर रीजर। हमरा लोकन सीनियर रीजर से खेत में लागल ठार ओ पाती में लागल फसलक जड़ि पर माटि के चढ़ेबाक काज लैत छी और जूनियर रीजर से खेत में लागल फसिल में नाली बनेबाक काज लैत छी। ई बनाओल गेल नालीक व्यवहार नाली विधि से पटौनी करबा में कैल जाइत अछि। मोल्ड बोर्ड हॉर, एहि सँ कम अवधि में समुचित रूप सँ खेतक

0: गुताई कर सकैत छी, हरियर खाद के खेत में मिला सकैत छी, संग संग ई गहीर जड़ि वाला घास के सेहो निकालैत अछि। डिस्क हैरो, एहि कृषिक यंत्रक व्यवहार हमरा लोकनि खेतक माटिक ढेपा के तोड़बा में और माटि के हल्लुक करबा में करैत छी, संग संग माटि के भुरभुरी बनेबा में काज ई अबैत अछि। कल्टीवेटर ई दू प्रकारक होइत अछि, एकटा 5 फार वाला ओ दोसर 3 फार वाला। कल्टीवेटर सँ हल्लुक माटिक जोत खेत में कयल जाइत अछि, 5 फार वाला सँ खेतक माटि के फसिल के बाउग करबा योग्य बनाओल जाइत अछि। एतबे नहि, 3 फार वाला सँ पाँती में लागल फसलक कमौनी निकौनी कयल जाइत अछि। एकरा में यूट्यूब लगा कर खेत में फसलक बीया के बाउग सेहो कयल जा सकैत अछि, जेना गहूँम, बूट, मकई इत्यादि। रीपर ई कटनीक काज में व्यवहार कयल जाइत अछि। धान ओ गहूँम फसलक खेती एहि कृषि यंत्र सँ कऽ सकैत छी। ई दू प्रकारक होइत अछि, एकटा पावर टीलर चालित, ओ दोसर ट्रैक्टर चालित। थ्रेसर, एहिसँ फसलक दौनी कयल जाइत अछि, एकरा चलयबा काल सतर्कता ओ सावधानी राखऽ पड़ैत अछि। ट्रैक्टर ई कृषिक आधुनिक ओ उन्नत के संग संग बहुउपयोगी यंत्र अछि। एकरा सँ हमरा लोकनि कतेको प्रकारक काज लैत छी, जेना खेतक जोताई करब, फसलक दौनी यंत्र चलायब, बोझ ढोअब इत्यादि। एकरा सदैत निर्धारित गति सीमा में चलेबाक चाही, ओ एकर उचित रखरखाव करबाक चाही।
1: ये था कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें, ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस

0: पटियाला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर, कभी भी, कहीं भी। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय है ब्रेन ट्यूमर, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज आलम, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर एजाज आलम साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: ये ब्रेन ट्यूमर है क्या?
3: ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके बिना जो कुछ एबनॉर्मल कलेक्शन बन के गांठ जैसा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, आम भाषा में अगर हम बोले तो।
2: क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकने वाली बीमारी है?
3: जी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जब ये मस्तिष्क के अंदर होता है तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
2: इसके क्या कारण है?
3: इसका एग्जैक्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, जैसे केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर, जीन म्यूटेशन, प्लस जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर किसी को तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल का सेवन है, ये सब चीज़ें एक रिस्क फैक्टर होती है जिससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है।
2: क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में जब ये बढ़ाव होता है गांठ का, तो क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं?
3: जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा होता है जिससे हम बात करते हैं, कुछ हिस्सा होता है जिससे हमारा याददाश्त कंट्रोल होता है, हाथ पैर का अलग सेंटर है, देखने का अलग सेंटर है। तो जिस भी हिस्सा पे ब्रेन ट्यूमर अटैक करता है वहाँ का सिम्टम आता है। बट कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, मिर्गी का दौरा आना, आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर होने का एक संकेत देता है।
2: क्या लकवे वाले लक्षण भी आते हैं?
3: जी बिल्कुल, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ से हाथ पैर का पावर कंट्रोल होता है तो उससे हमारे पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है।
2: क्या बहुत दिनों तक रहने वाला जो सर दर्द है, क्या उसकी जड़ में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है?
3: जी, बहुत सारे सरदर्द की बीमारी जो कई सालों से है, या फिर ऐसा सरदर्द जिसके साथ बहुत तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, देखने में दिक्कत आता है, ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है।
2: कौन से वैसे लक्षण हैं जिस पर आदमी को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए?
3: मिर्गी का दौरा आना, अचानक से आँख की रोशनी का चला जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट आना, याददाश्त में कमी होना, या फिर खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ब्रेन का नर्व है वो सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें जल्दी सचेत हो जाना चाहिए।
2: आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं?
3: दो प्रकार हम जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, एक बिनाइन होते हैं जिसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट जिसको आम भाषा में कैंसर भी बोलते हैं। ऐसे तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन आम भाषा में जानना ये ज़रूरी होता है कि ये बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है।
2: बिना कैंसर वाला

0: जो ब्रेन ट्यूमर है वो और कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या उनके लक्षण में भी फर्क होता है?
1: लक्षण में फर्क होता है। जो कैंसर वाला है उसमें जो लक्षण होते हैं वो बहुत तेजी से आते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है। और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आंख की रोशनी कमजोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफी लंबा वक्त लेता है।
0: इसकी जांच कैसे की जाती है?
1: इसकी जांच जैसे कोई मरीज हम लोगों के पास आता है तो उनसे बीमारी के लक्षण पूछने के बाद फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं मरीज के ऊपर कि हाथ पैर की ताकत कैसी है, आँख की रोशनी कैसी है। वो सब करने के बाद अगर हम लोग को डाउट होता है कि नहीं दिमाग में ट्यूमर के लक्षण सब आ रहे हैं तो इमेजिंग मॉडलिटीज पे जाया जाता है, कॉमन आर, MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि दिमाग में गांठ है या नहीं है।
0: हर गांठ कैंसर नहीं होता है लेकिन कैंसर हो भी सकता है।
1: जी, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं और जिसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो ये ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कैंसर हो गया अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये गलत धारणा है।
0: इलाज के क्या तरीके हैं?
1: पहला इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है। 90% से ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन करके निकालना होता है। कुछ 1-2% ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी या फंक्शनल ट्यूमर जो दवा से भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मैलिग्नेंसी आती है जैसे कैंसर आते हैं तो फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी प्लस उसकी कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं।
0: ब्रेन ट्यूमर को लेकर के अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आम लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है, आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब आजकल न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुका है, अच्छी अच्छी मशीनें, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप आ चुके हैं, सर्जरी आसान हो गई है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और चूंकि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर वक्त के साथ बढ़ेगा और फिर वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो ऑपरेशन अगर कोई डॉक्टर सलाह देते हैं और ये बताते हैं कि ऑपरेशन से आपकी बीमारी ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं तो हमेशा ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। इसमें दवा का ज़्यादा ट्रायल लेके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
0: डॉक्टर एजाज आलम साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना स्वास्थ्य चर्चा आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना के साथ।

रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान।
1: एपिसोड नंबर 56।
0: मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह एवं मिताली बी सिंह के हैं।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का समय होता है प्रातः 8:00। 8:15 पर आप सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज। 8:48 पर प्रादेशिक समाचार। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय प्रातः 9:05 पर। 9:50 पर आप सुन सकेंगे कुछ फिल्मी गीत। बज्जी का कार्यक्रम अंगना सुनवाएंगे आपको प्रातः 10:30 पर। 11:00 आप सुनेंगे आज उपशास्त्रीय संगीत। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 12:00 आनंद ले सकेंगे आप कुछ नए फिल्मी गीतों का। और 12:30 पर रविवार 9 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश आपको सुनवाएंगे। एक बजकर 15 पर पुनः आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का। 2:00 प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें। और 2:10 पर सुनते हैं आप रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का समय होता है 2:15 पर। 2:30 पर कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। और 3:00 सुनेंगे आप बज्जी का लोकगीत। ये थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। शाम 5:40 पर आनंद लेते हैं आप कुछ नए फिल्मी गीतों का। शाम 6:10 पर विद्यापति गीत। 6:25 पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नव ऊर्जा। और शाम 6:55 पर किसान वाणी। प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल के साथ आप सुनेंगे शाम 7:30 पर संसद समीक्षा का। प्रसारण समय होगा रात्रि 8:00। और 8:15 पर आप सुनते हैं मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार।

0: सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम् इत्यनेन पटलेन त्रिकोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

0: उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक अइ अंक में हम प्रवीण हमरा संगे कल्याण भाई स्नेह नमस्कार करै छी। कल्याण भाई अपने के स्वागत है आजुक अइ कार्यक्रम में।
1: प्रवीण जी आपके साथ साथ समस्त श्रोताओं को भी मेरी ओर से भी नमस्कार। और जैसा कि हम कार्यक्रम का आरंभ हमेशा से करते रहे हैं एक सुविचार से, और आज का सुविचार हमने लिया है रहीम के दोहे से, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए।
0: अति उत्तम।
1: अर्थात ये जो प्रेम है ना, एक धागा है जो एक दूसरे को जुड़े रखता है, और जिस दिन ये धागा, प्रेम रूपी धागा टूट जाता है ना, उस दिन आदमी का संबंध, व्यक्ति का संबंध एक दूसरे से टूट जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर, इस प्रेम रूपी धागे को जरा जरा सी बातों पर मत तोड़ा करो। हाँ, क्योंकि एक बार अगर कोई धागा टूट जाता है तो फिर वो जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है, अगर उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश हम लोग करते भी हैं तो बीच में गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी तरह मानवीय जो संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है एक दूसरे के साथ, प्रेम रूपी संबंध, और वो प्रेम रूपी धागा भी उसी तरह से एक बार यदि टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं आसानी से, और यदि जुड़ता भी है तो गांठ रूपी वो एक दूसरे के बीच जो आक्षेप, ये अविश्वास सब रहता है, अविश्वास का जो गांठ है, अविश्वास रूपी गांठ जो है सो जम जाती है। इसलिए कहते हैं रहीम जी कि कभी भी प्रेम को बनाए रखने को की कोशिश की जाए। उसे अगर कुछ अपमान भी हो जाता है, अगर कुछ हमारा घाटा भी हो जाता है, तो हम उसे सह लें, लेकिन प्रेम रूपी धागा को बरकरार रखा।
0: अति सुंदर विचार, ओना कोनो तरह के सुविचार हमरा सबके जीवन में सहायक होते है। अगर ओकरा हम आत्मसात करे छी, ओय पर मंथन चिंतन करे छी, तो जीवन में जे संकट अबै छै तै में हमरा ओ सफलता दै है, और ओय में गुढ़ रहस्य छुपल रहे छै। जेना एखने अहाँ कल्याण भाई कहलहुँ है जे प्रेम दुनिया में, प्रेम के कोनो मूल्य नहीं छे, अमूल्य छे, और तई कोनो परिस्थिति में अपन भाव के, अपन प्रेमक भाव के नहीं छोड़बाक चाहिए। ओना प्रेम तो अनंत अछि, रूप अलग अलग होय छे, और समय काल परिस्थिति में प्रेमक रूप बदलित रहे छे। माय बेटा के प्रेम सो होय छे, भाई बहिन के प्रेम सो होय छे, पति पत्नी के प्रेम सो होय छे, और प्रेसी और प्रेम के प्रेमिका के सो प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका के सो प्रेम होय छे, लेकिन सबके भाव अलग अलग छी। वासना के प्रेम में कतौ जगह नहीं दिलकिन है। इस सोलो कला के जे देवता छथि श्री कृष्ण, से हमरा सबके

0: समझा देने छथि, बुझा देने छथि और यो कहने छथि जे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यानी कर्म से पैघ दुनिया में किछु नहि होइ छै, तै कर्म एहन करी जकर फलाफल नीक होइ है। और प्रेमक भाव हमेशा हृदय में राखी सब के प्रति, जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव राखी तो जीवन सफल होइ छै। कार्यक्रम के आगा बढ़बै,
1: बिल्कुल कर्म की बात आपने की, तो हमारा जो कर्म है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम अगले पायदान की ओर चले और श्रोताओं को आज का दिन यानी 11 अगस्त
0: जी
1: इतिहास के आईने में क्या कुछ झलक दिखलाता है, इसका जो है सो एक रूपरेखा हम बता दें
0: जी।
1: 1999 की बात करें प्रवीण भाई, तो यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था, सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण
0: जी, जी।
1: और 2004 में चीनी कंप्यूटर उद्योग के पितामह कहे जाने वाले चेन चुनशियान का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। भारत और पाकिस्तान ने 2004 में आज ही के दिन वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला बदली की। वहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी सहित 8 मुद्दों पर इस्लामाबाद में आज ही के दिन वार्ता सम्पन्न हुआ 2004 ईस्वी में ही। और संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को पाकिस्तान द्वारा परमाणु मदद दिए जाने की पुष्टि की। 2006 में पाकिस्तान ने 3 अगस्त 90-20 श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया। 2007 की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने
0: जी।
1: और आरजे नायक पार्श्वनाथ रिटेल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए ये। और उसके बाद चलते हैं आज के दिन कुछ महान हस्तियों के जन्म पर नजर डालते हैं। तो 1924 में लाल मणि मिश्र, जो भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। 1937 में निर्देशक जॉन अब्राहम, जो लघु कथा लेखक मलयाली और भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1974 में और आगे हम बढ़ते हैं 1892 में आर्ची विलेस, जो पश्चिम भारतीय क्रिकेटर हैं थे, उनका जन्म हुआ था। और निधन की बात करें प्रवीण जी,
0: जी, जी
1: तो आज के दिन ही 1908 ईस्वी में खुद्दीराम बोस ने अपना बलिदान दिया था। उन्हें अंग्रेज शासकों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत ही क्रांतिकारी।
0: और जहाँ तक हम इतिहास में पढ़ने छी जी, बहुत अल्प आयु में उनका
1: 19 वर्ष की आयु में उनको फांसी दे दी गई थी, जो कि अल्पायु तो है ही। और 1967 में नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार थे, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक भी थे ये, तो उनका निधन हुआ था। पी जयराज एक अभिनेता थे जिनका 2000 ईस्वी में आज ही के दिन निधन हुआ। बी एस नायपॉल, जो भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे, 2018 में उनका निधन हुआ। राहत इंदौरी, ये प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे, 2020 में इनका निधन हुआ। तो ये था आज का इतिहास
0: जी। सत्य कहलूँ, और इतिहास तो हर पल बनैत अछि। आशा ये करी जे जीवन में एहन काज करी जे इतिहास में हमरो सब के नाम आवे, ये आशा करै छी। और इतिहास के किछु अंश हम सब सब दिन एहि कार्यक्रम में परोसे छी, अहाँ सबके नीक लगैए कि बेजाय लगैए, एहि पर किछु विशेष टिप्पणी जरूर कऽ सकै छी पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, सो हम सब उपलब्ध रहै छी आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आगा बढ़बैत आब समय भऽ रहल अछि जे एकटा चहटगर सुमधुर मैथिली गीत हम सब सुनी, तऽ आउ सुनै छी ई मैथिली गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: विज्ञापन से पूर्व श्रोता सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में ये मैथिली गीत
3: रही जोरे बटोही
2: जनक
3: कानन, यानी जनक के कानन, यानी सोना के घर में बटोही कनी दे
2: कानन, आंगन या अपना देश प्रदेश में कहा जाता है।
3: तो सुंदर से रचना छल और पर अरविंद जी के स्वर छल जे निक लागल है अहां सबके आशा करे छी।
2: और आगे अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं प्रवीण जी, और श्रोताओं के लिए हमारे प्रवीण जी लाए हैं बटोर कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल। तो आइए सुनते हैं प्रवीण झा से हालचाल।
3: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार में आब 80,053 मुखिया के बदला में 13,000 मुखिया के चुनाव होयत। वर्तमान में मुखिया सब के कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2026 में समाप्त भ रहल अछि आ पंचायत सब के नव परिसीमन होयत। दू दशक बाद ई नव परिसीमन भ रहल अछि। जनसंख्या के हिसाब सँ क्षेत्र के हिसाब सँ होयत परिसीमन, और जैसा विकास के धारा बहुत पहले कम पंचायत छल और बेसी पंचायत बनायल जाए, जे कारण से मुखिया के पद सेहो बढ़ जायत और विकास होयत पंचायत सब में। पंच और सरपंच सब नियम के अनुसार

0: हुनका सबके अधिकार भेटत जे ग्राम पंचायत में हुनका लागू करबाक छैन। बिहार पंचायत सब में घोटाला 2000 से बेसी मुखिया जांच के दायरा में एला। 12 मुखिया हटायल जा रहल छथि। ग्राम पंचायत के विकास में हुआ वाला खर्च में घोटाला के बात सब सामने में आयल अछि, जेई में 2000 से बेसी मुखिया फंस चुकल छथि और 12 मुखिया हटायल जा चुकल छथि। बिहार राज्य भर में अगला मास में राष्ट्रीय लोक अदालत लागत, जाहि में ई चलान के लेल पहले आवेदन देनाय आवश्यक है, एकरा जरूरी मानल जाए। जिनका क्यों ई चलान प्राप्त अछि और एखन तक नहीं भरल है, ओ लोक अदालत में आबि कऽ निश्चित रूप से अपन ई चलान के समाप्त करवा सकै छी और लोक अदालत में एहन मामला सल्टियाल जाइत अछि। बिहार पेंशन दिवस पर 1.01 करोड़ पेंशन भोगी जन के भेजल गेल पेंशन। सब जिला पदाधिकारी के निर्देश देल गेल राज्य सरकार के तरफ से जे कोनो उपयुक्त पात्र के पेंशन यदि नहीं भेट रहल छन और ओकर हकदार छथि तो ओ छूटक नहीं चाही, किया तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मंतव्य यह अछि जे सामाजिक सुरक्षा भेटे ओ व्यक्ति और जन के जे ओकर हकदार छथि, एहि प्रति सरकार प्रतिबद्ध अछि। बिहारवासी सौ सरकार आग्रह कलन है जे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता दिल जाए। राष्ट्र के आन बान शान हमार तिरंगा अच्छ, वही में तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर सौ सहभागिता दैत। सावन मास के दोसर सोमवारी को शिव मंदिर सौम में विशेष पूजा अर्चना भेल। भक्त जन के पवित्र शिवलिंग पर गंगा जल सहित पवित्र जल अर्पित केला और अपन अपन मनोकामना पूर्ण करवाक हित भोला बाबा से आग्रह केला। हुनकर सबके भाव चलन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के कामना संग से ओ अपन भक्ति और जलार्पण करित केला। कुशेश्वरनाथ में आस्था के जन सैलाब भारी भीड़ रहल। 1,00,000 से बेसी श्रद्धालु सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगेलन और जलाभिषेक केलन। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर भक्त सब पर हेलीकॉप्टर यानी उड़न खटोला से फूल बरसाओल गेल और चारू कात भगवयमय और केसर या रंग सब पटल छल। विहंगम दृश्य देख में लागल छल। डेग डेग पर प्रशासन सुरक्षा हेतु मुस्तैद छला और सेवा के लिए बहुतो आदमी सेहो मुस्तैद रहे छला। बिहार के शिक्षक गण के आपात स्थिति में 48 घंटा के अंदर अवकाश भेटत। जी, सरकारी निर्देश देने अछि जे कोनो शिक्षक के आपात स्थिति में 48 घंटा के अंदर ओकर अवकाश पास हेबाक चाही। एहि में विलंब भेला पर संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई भ सकैत अछि। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हालचाल में पुनः एक बार स्वागत है। बिहार नव 211 डिग्री महाविद्यालय के लेल नव शिक्षक भेटल, मुदा एखनो 80 पद खाली अछि। आब संबंधित विश्वविद्यालय करता आवंटन। अंग्रेजी भाषा में सबसे बेसी रिक्त अछि शिक्षक के पद। नव नियुक्त संविदा शिक्षक के आवंटन कैल गेल महाविद्यालय सब। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा उपशास्त्री द्वितीय चक्र के मेगा सूची जारी कैल गेल। 11 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक नामांकन होयत। दरभंगा बाबा हजारीनाथ मंदिर में सावन मेला के लिए 10,00,000 रुपया स्वीकृत भेल

0: अछि। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तरफ सँ ई राशि भेटत। जरूरी स्वीकृत के लेल रुपया देल गेल अछि। दरभंगा स्वास्थ्य के लेल 31 अगस्त तक छूटल बच्ची सब के टीकाकरण होयत लक्ष्य राखल गेल अछि। ज्ञातव्य हो कि सर्वाइकल कैंसर सँ बचाव हेतु 9 साल सँ 14 साल के बच्ची सब के 9212 बच्ची के होयत टीकाकरण। बिहार राज्य में संस्कृत महाविद्यालय सब के आधुनिकरण होयत केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहलन। और जे संस्कृत के जतो ह्रास भ रहल अछि ओहि महाविद्यालय सब के आधुनिकरण कयल जायत और संस्कृत के बढ़ाओल जायत। विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन के विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन केला। और पवन मिथिला और वैशाली समेत बिहार के 100 से अधिक ट्रेन सब में बढ़त यात्री के सीट। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: विज्ञापन से पूर्व श्रोता अवगत हो रहे थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल। हालचाल लेकर उपस्थित थे प्रवीण कुमार झा। और प्रवीण जी, अब श्रोताओं को आज के मौसम पूर्वानुमान से अवगत करवा दें
0: जी।
3: तो केंद्रीय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 8 से 12 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में 11 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है और अन्य दिनों में भी अनेक स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है
0: जी।
3: सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत रहने का अनुमान है
0: जी।
3: इस दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी अथवा दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान।
0: एक जरूरी सूचना दो दी, आई दूटा जगह पर बिजली के आपूर्ति कनी बाधित रहत, एकरा ध्यान से सुनब। मंगल दिन यानी आई बिजली विभाग के तरफ से अलग अलग स्थान ट्रांसफर शिफ्टिंग कार्य भ रहल अछि। एहि कारण से एहि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहत। 33/11 के वी विद्युत शक्ति उपकेंद्र अरवन से निकलय वाला 11 के वी दोनार फीडर में दोनार चौक के जम्पर खोलल 11 के वी लाइन शिफ्टिंग के कार्य कयल जायत, जकर कारण भोर 6 बजे से यानी चल रहल इस समय 8 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहत। एहि में दोनार चौक अललपट्टी क्षेत्र प्रभावित रहत। 11/33 के वी विद्युत शक्ति उपकेंद्र जेल से निकलय वाला 11 के वी सैदनगर फीडर में एकमी बांध बरहेता रोड के पास एक ट्रांसफर के शिफ्टिंग कैल जायत।
3: और
0: अब किस गप सब भोजवाक चाहिए।
3: हाँ, प्रवीण जी हमारे जीवन में रोटी कपड़ा और मकान के बाद
0: जी
3: यदि कोई सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वो है शिक्षा।
0: यो हम तो कहब है।

0: शिक्षे सबसे बेसी आवश्यक छे मनुष्य समाज के लेल, सभ्य समाज के लेल।
1: नहीं देखिए, ये शिक्षा सबसे ऊपर नहीं है, पहले तो जान बचाने के लिए रोटी चाहिए,
0: हाँ,
1: कपड़ा भी चाहिए,
0: हाँ,
1: जान बचाने के लिए
0: चाहिए,
1: मकान भी चाहिए जान बचाने के लिए। इस सबसे जब हम उबरेंगे तब ना शिक्षा की जरूरत होगी, और अगर जान ही नहीं रहेगी तो शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इस सब के बाद ही शिक्षा की आवश्यकता आती है। वैसे आपकी अपनी सोच है, उसको मैं स्वागत करता हूँ उसका। तो ये शिक्षा जो है, जिस तरह मानव का की जीवन शैली समय समय पर बदलता चला आया है, जैसा कि हमारे पूर्वज लोग का जो की जो जीवन शैली थी और आज हमारी जो जीवन शैली है, उसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है।
0: हाँ,
1: नहीं बहुत ही ज्यादा अंतर हो चुका है। और इसी तरह बिल्कुल, तो इसी तरह शिक्षा का स्वरूप भी समय के साथ साथ बदलता रहता है।
0: जी जी
1: नहीं
0: निश्चित कहलो, ओना हम जे कहने चलो शिक्षा एहि दुआरे कहने चलो भाई, ओहि पर हम कनी अपन अपन विचार दी, जे शिक्षा एहि दुआरे आवश्यक छै जे शिक्षित भेला के उपरांत आदमी जे जेना दैनिक जीवन में भोजन आवश्यक छै, तो शिक्षित आदमी जे भोजन करैए से ओहिना ओकर भोजन में लक्षण देखाई दै छै। ओना यदि अशिक्षित अइ तऽ ओ नहि बुझि पबै छै जे कोन चीज खाए, कोन समय पर खाए, कखन खाए, केहन ओ हमरा फायदा करत कि नुकसान करत। लेकिन एकटा पढ़ल लिखल साक्षर आदमी जे, ज्ञानी आदमी जे, ओ ओहिना आहार लैए जे जीवन के लिए आवश्यक छै। बस भेद इएह छै, मूलभूत सुविधा के लेल तऽ ई आवश्यक छै जे जीवन अछि, जीवन चलबऽ के लेल तऽ मूलभूत जे बात छै ओ तऽ आवश्यक छै, हवा भेल, पानि भेल, साँस भेल, भोजन भेल, ई सब तऽ आवश्यक छैहे। लेकिन शिक्षा एकटा संस्कार छै जे हर मनुष्य के, हर प्राणी के हेबाक चाही, नहि तऽ मनुष्य में और जानवर में भेद की रहि जेतै।
1: शिक्षा का स्वरूप जो हम प्राचीन काल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी या शिक्षा का जो स्वरूप था, और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा का जो स्वरूप है, वो बहुत ही अलग हो चुका है। पहले हम ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के पढ़ते थे और घर परिवार से अलग होकर के, और उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जीविकोपार्जन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था।
0: जी जी जी जी,
1: शिक्षा का उद्देश्य था
0: कि
1: मानवीय मूल्यों का उत्थान,
0: एकदम सही कह लो,
1: सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब किस तरह से सुस्थिर रहेगा, संतुलित रहेगा, इस सब का ज्ञान हमें दिया जाता था। और बादमा की जो व्यवस्थाएं थी वो बदस्तूर चलती रहती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था हो गई, उसमें नैतिक मूल्यों के साथ साथ हमारा जीविकोपार्जन एक सबसे बड़ा लक्ष्य हो चुका है कि हम जीवित रहने के लिए, क्योंकि आखिर जीवित रहने के लिए हमें रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए भी शिक्षा में जगह दिया गया है कि हम किस तरह से रोजगार अपना करके और जीविकोपार्जन कर सकते हैं।
0: सत्य कहलाऊ, देखियो हम एकटा बात फिर बीच में कहब, जे शिक्षा के मतलब केवल ई नहीं होइ छै जे डिग्री एटा प्राप्त करी, प्रमाण पत्र प्राप्त करी और शिक्षित भ गेलौं, से बात नहीं होइ छै।
1: वो हमारी और आपकी भावना है, डिग्री प्राप्त करके केवल यदि हम और आप अपने आप को शिक्षित मानते तो ये हमारी आपकी भावना है। शिक्षा नहीं कहती है कि आप डिग्री प्राप्त कर लिए तो शिक्षित हो गए।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: शिक्षा तो वो है, अनुभव है शिक्षा।
0: जी जी, जिंदगी में अनुभव,
1: अनुभव जो है, आपने अध्ययन जो किया है, आपने जो अभ्यास किया है, आप वो है शिक्षा।
0: जी जी,
1: आप डिग्री हासिल करने के लिए जो है शिक्षा का कहीं पर कोई जगह नहीं है। डिग्री एक अलग चीज है, लेकर के कई डिग्रियां लेकर के लोग जिंदगी भर अटैची में बंद करके दिवंगत हो जाते हैं और डिग्रियां काम नहीं देती हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी अनुभवी लोग भी अपने उस मुकाम को नहीं पहुंच पा सकते हैं। तो ये एक अलग बात है। लेकिन रही बात शिक्षा का जो बदलता स्वरूप है, उसमें कैसे क्या जो बदलाव हुआ है, उसमें शिक्षा के बदलते स्वरूप की अगर बात की जाए, तो जैसा कि हमने अभी बातें की कि पहले हम आश्रमों में पढ़ते थे,
0: शिक्षा के प्रणाली छल,
1: हाँ बिल्कुल, तो अब जो है सो और रटाया जाता था। पहले एक एक श्लोक जो है सो अब रटते रहिए किताब को रटना। अब क्या है कि अब रटने से इतर,
0: जी
1: अब रटने पर जो है सो ध्यान कम दिया गया है, वैचारिक समझ पैदा किया जा रहा है कि अगर किसी विषय वस्तु को हम रटते रहे जिंदगी भर, फिर भी याद तो हो गई। एक था गांधी जी का तोता,
0: जी
1: उसको गांधी जी सब दिन सुबह सुबह उठ करके पढ़ाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और तोता वो बात एकदम से रट गया था। लेकिन इस भाव को नहीं समझ पा रहा था, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसका अर्थ क्या है। शिकारी एक दिन आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तोता उस पर जाकर के फंस गया उसमें लोभ से, और उसमें फंसा हुआ भी है और बोल रहा है कि शिकारी आएगा।

0: जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसने। तो शिक्षित होकर के भी यदि हम अपने जो कर्तव्य हैं, शिक्षित देखिए एक शिक्षित और अनपढ़ ये दो चीज है, लेकिन मूर्ख और विद्वान ये दोनों शिक्षित होकर के भी हम मूर्ख बने रह सकते हैं। वो मूर्खता कई मायनों में देखा जा सकता है कि शिक्षित होकर के भी अगर हमारे अंदर मानवीय मूल्यों पर की कोई अवधारणा नहीं है, हमारे व्यवहार में सामाजिकता नहीं है, हमारे स्वभाव में कोई विनम्रता नहीं है, तो ये शिक्षित होने से अच्छा है कि आप या हम मूर्ख ही रहते तो अच्छा होता। और बदलते स्वरूप की जहाँ तक बात हो रही है, तो पहले हम किताबों पर ही शिक्षार्जन के लिए निर्भर करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि डिजिटल जो तकनीक है या तकनीकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है आज के समय में कि हम किताबों से इतर तकनीकी ज्ञान के माध्यम से भी हम शिक्षार्जन कर सकते हैं।
1: सरकारों नव शिक्षा व्यवस्था अलग है 2020 में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जकर मैं एक बात कही दी जे सरकार अही बात पर विशेष ध्यान दिलकिन है जे शिक्षा में कौशल विकास के शिक्षा बेसी देवाक चाहिए, यानी टू प्रैक्टिकल, यानी अहाँ में की ये गुण, ओ गुण के केना, यानी व्यक्तित्व चरित्र निर्माण केना होइ छै आदमी के, ओकरा में कौशल विकास केना, तै पर विशेष।
0: बिल्कुल, यानी शिक्षा अब केवल अंक लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता पर भी जोर देती है, व्यावसायिकता और कौशल विकास की दृष्टि से भी नई नीतियों के तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक और तकनीकी कौशल से जोड़ा जा रहा है। व्यक्तिगत शिक्षण के आधार पर तकनीक के माध्यम से अब हर छात्र की क्षमता के अनुसार शिक्षा का स्तर तय किया जाता है।
1: जी सत्य कहलौं। बीच में हम एक बात कहब, जब बहुतो आदमी बुझे छे जे हम शिक्षा प्राप्त कर लेलौं, डिग्री प्राप्त कर लेलौं तो हम बड्ड गुणी भ गेलौं। एकटा छोट छीन हम एकटा अहाँके खिस्सा कहि दै छी बीच में भाई कल्याण, भेलै जे चारिटा छात्र संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान प्रवीणता हासिल कऽ कऽ गुरुकुल से वापस आबे छला, नदी में से बड़ पानी आबि गेल छले, बाढ़ आबि गेल छले, आप कहला जे एमे केना जाए, तो ओ सब कहुना प्रवेश केला, ओइ में से एकटा कहुना कि गिरन नदी के धारा में बह लगला, तो तीनटा कहल मुँह तकलखिन जे आब की कैल जाए, तो एकटा कहलखिन ओइ में से जे कनि शास्त्र के देखियो शास्त्र एहि समय में की कहैए, तो देखलखिन से जी अरे बाप, शास्त्र कहैए जहन सर्वनाश हुआ लगे तो किछ बचा ली, तो ओहिमे से एक आदमी निकालला डाँड़ में से छुरी निकालला, और जे ओ हुनकर साथी डूबे छलखिन हन तो हुनकर मात्र मुड़ी बाहर छलै ना, उब डूब करै छलै, हुनकर मुड़ी के केस पकड़ के ऊपर से छोपि लेलखिन, यानी जहन पूरा डूबि रहल छै तो कनी बचा ली।
0: तो यही हुई समझ की बात कि विद्वता हासिल कर लिए लेकिन समझ नहीं पैदा हुई,
1: व्यावहारिकता
0: व्यावहारिकता नहीं पैदा हुई,
1: प्रैक्टिकल जो गप कर लो है,
0: व्यावहारिकता का जनक समझ ही है। अगर समझ हम में रहेगी तभी हम उसको व्यवहार में शामिल कर सकते हैं, जब समझ ही नहीं तो व्यवहार में कहां से शामिल करेंगे।
1: जी, जी,
0: तो वहां पर समझ ही नहीं थी कि एक व्यक्ति के गर्दन काट लेने से क्या वो कोई सहायता हुई,
1: नहीं वो शास्त्र में पढ़ल की जहां सर्वनाश हुआ लगा तो किछ बचा ली, ओहिमे सँ तो बुझलखिन जे पूरा शरीर डूबिये गेल छै तऽ जे ऊपर भाग छै तकरा हम बचा लै छी, ओहिने तऽ शास्त्र के तऽ ज्ञान भऽ गेल छलनि हुनका,
0: लेकिन उसका समझ उसके प्रति विकसित नहीं थी, और समझ जब विकसित नहीं तो व्यवहार जो है तो दुर्व्यवहार, मतलब एक अलग टाइप का व्यवहार हो गया जान बचाने की अपेक्षा, और उसको जो है गर्दन काट के उसकी जान ले ली गई।
1: आधुनिक शिक्षा हमरा सबके एहि के समझदारी बढ़ा रहल अछि, नव शिक्षा पद्धति आबि गेल अछि, ओहि अनुसार बच्चा सब पढ़े।
0: हाँ, तो बदलता स्वरूप जो है शिक्षा का प्रवीण जी, उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं।
1: जी,
0: अब जैसे डिजिटल विभाजन,
1: जी
0: ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र में अभी भी
1: जी
0: इंटरनेट और उचित तकनीकी उपकरण की भारी कमी है।
1: जी
0: गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से बदलते तकनीकी युग में शिक्षक लोगों को लगातार प्रशिक्षित करने की जो व्यवस्था है वो अभी कमजोर है और उसकी बड़ी आवश्यकता है। मूल्य और नैतिकता का ह्रास, जो पहली शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें और कुछ हो ना हो मूल्य और नैतिकता का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता था, और उसमें प्रगाढ़ता भी थी, हर एक व्यक्ति के अंदर अपने कर्तव्य का आत्मबोध था।
1: जी जी, जी
0: लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो उस समय सुगठित थी इसका सबसे बड़ा कारण था कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पर एकदम सुदृढ़ रहते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, अधिकार के लिए जो है सो मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ अधिकार, यह शिक्षा का मूल तत्व है। तो ये जो नैतिक जो ह्रास है, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और AI

0: के दौर में मानवीय संवेदना और नैतिक मूल्य को बनाए रखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है।
1: एकदम सत्य कहलाऊं है, एकदम ये प्रश्न चिन्ह है एक।
0: और इसके अलावा एक और चुनौती है इस शिक्षा के बदलते स्वरूप के मद्देनजर, बढ़ता हुआ लागत, बढ़ती हुई लागत जो है आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महंगे होने से यह आम आदमी के पहुंच से दूर भी हो गई है।
1: एक प्रश्न चिन्ह
0: जो गरीब गुरबा है सो इस तकनीकी शिक्षा को पाने में असमर्थ अभी भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो बुनियादी शिक्षा की तो बात, तकनीकी शिक्षा की तो बात छोड़ी, बुनियादी शिक्षा जिस देश में सरकारी तौर पर मुफ्त देने की व्यवस्था हो, वहां पर तकनीकी रूप से शिक्षित होने के लिए एक अलग से व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी और ये जरूरी भी है। और कार्यक्रम में भी एक चीज जरूरी है, हम लोग बातों में ही लगे हुए हैं लेकिन श्रोताओं के दिलो दिमाग का ख्याल हम लोग नहीं कर रहे हैं।
1: आओ तो अहां के भाव हम बुझ गए और श्रोता सब सो इंतजार में, अब सुनिए एक फिल्म संगीत।

0: बहुत ही सुंदर यह फिल्म संगीत, अभी जो मौसमीय स्थिति जो चल रही है
1: जी, जी,
0: उसके मुताबिक यह गीत बिल्कुल ही सही बैठता है कि हर व्यक्ति और खास तौर से किसान भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, घनघोर घटाएं घिराए और खेतों में पानी भर आए, इतना वर्षा हो, इतनी बारिश हो कि किसान के हृदय खुशी से भर उठे।
1: सती कहलम, कृषि प्रधान देश में हमसब रहै छी और जखन किसान के खेती नीक हेतै तो निश्चित रूप से मन ओकर खिलवे करतै, जेना मेघ देख कर और हवा देख कर से मोर के पंख खिल जाइए और नाच करैए, तहिना किसानक मन रूपी जे मोर छै से ओहिना मेघ के आ बारिश के देख कर एहि महीना में से ओहिना नाच करै छै। लेकिन आशा ई करै छी जे अपना ओहिठाम देखल गेलै जे एहि बेर वर्षा कम भेलै, आशा ई करै छी जे एहि सावन महीना में से शिव भगवान हमरा सबके ततेक वर्षा दैथ जे हमर सबके किसान खुशहाल होए। तो ओना देखल गेलै कोसी नहर परियोजना में जतय ततय नहर के पानि आयल है ओतय खेती नीक ढंग से भेल अछि, ई हम देखलहुँ हैं आ नीक लागल जे कोसी नहर परियोजना से बहुत जगह किसान आब खुशहाल भऽ रहल छथि और दूटा तीनटा साल में ओहिसँ फसल लऽ रहल छथि।
0: बिल्कुल प्रवीण जी, कहते हैं कि जो व्यक्ति एक गृहस्थी समुचित व सुव्यवस्थित ढंग से चला सकता है
1: जी,
0: वह एक देश को भी समुचित व व्यवस्थित ढंग से चला सकता है। क्योंकि गृहस्थी चलाना उतना आसान नहीं है, वो भी तब जब हम में वित्तीय साक्षरता नहीं है। और अर्थात वित्तीय साक्षरता का मतलब हम जो धनोपार्जन करते हैं उसकी मितव्ययिता और सदुपयोगिता हमें तभी होती है जब हम वित्तीय साक्षर होते हैं, वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं। इसलिए वित्तीय साक्षरता आज के समय में हर परिवार के लिए जरूरी है।
1: एकदम सत्य कहलो, आई सत्य बात है जे कोनो चीज के कहल गेल छै जे परिवार जे होइ छै वो प्रथम पाठशाला होइ छै, नीक या बेजाय के ज्ञान ओहि ठाम से शुभारंभ होइ छै और ओ ओकर गार्जियन हुनका सबके दै छन बच्चा सब में। और इहो देखल गेलै है जे वित्तीय लेन देन यानी आमदनी अठन्नी आ खर्चा रुपया तो ओ घर केना आगा बढ़ि पायत भाई, लेकिन जत आमदनी रुपया आ खर्चा अठन्नी तो ओ घर में निश्चित रूप से बचत होयत। और जीवन के सार छै जे यदि बचत करै छी तो आगू आवा वाला दिन के लेल आ अर्थोपार्जन करै छी, नहीं तो एकाएक कोनो अर्थ की यानी पाई के काज भेल रुपया

0: पैसा काज भेल, धन के काज भेल, तो हम सब आकुल व्याकुल भ जाय छी। और ओहि परिस्थिति में हम सब कोनो ने कोनो जे उपार्जित धन अछि, संपदा अछि, खेत अछि, पथार अछि, सोना अछि, चांदी अछि, ओकरा या तो बेच दै छी या गिरवी रखै छी। ई मात्र ओकर कारण एकेटा होइ छै जे ई रुपया के जे लेन देन वित्तीय अनियमितता होइ छै तै के कारण ये परिवार में
1: वित्तीय साक्षरता न होने के कारण। और साक्षरता की बात मतलब वित्तीय रूप से हमारे अंदर कोई बोध नहीं है कि हम अपनी वित्तीय व्यवस्था को कैसे संतुलित करें, इसके कारण हम इस परिस्थिति में उलझ जाते हैं। और कार्यक्रम में भी हम ज्यादा बातों में नहीं उलझना है और फिर से चलना है मनोरंजन की ओर, और श्रोताओं को परोसते हैं फिर से एक फिल्म संगीत।

0: वक्त लेवा के समय आबि गेल अछि। त श्रोतागण हमरा सब के दी आज्ञा
1: मुझे यानी कल्याण कुमार झा को और
0: प्रवीण के
1: दीजिए अनुमति। नमस्कार मिथिला।

0: हे कतौ छी यौ?
1: की बात, की कहै छी?
0: हे ध्यान नहि अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गाँव घर कार्यक्रम छूट जायत।
1: ठीके कहलहुँ, हमरा तऽ हे ध्याने नहि छल। गाम घर कार्यक्रम में नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहन लोकन सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
0: से तो हमरा बुझले नहीं छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
1: हाँ ये रेडियो सेट नहीं है तो आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सकै छी। हे अकर ऐप नोट करी, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड करी आ कतौ बैस कऽ अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।
0: तो हमहूँ कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गाँव घर।
1: अहे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गाम घर कार्यक्रम, नीक नीक जानकारी के लेल, बुझलौ ने? अहे अपना संगे संगे आनो के कहब।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
3: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर।

तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4:00 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430002935।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। समय हो रहा है समाचार प्रभात का।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
6: छोटे मर्चेंट और किराना स्टोर हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
7: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही

0: कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी।

0: आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
2: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने 1 कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने 1 कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने 1 कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने 1 कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने 36वें में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर

0: राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11

0: अपसारित होंगे।
1: आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ, दिमाग मनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ, पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी नमक और तेल कम कीजिए।
2: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश में भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर हो रहा है राजकीय समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में भरत तिवारी के अधिवक्ता और उनकी मां द्वारा कोर्ट के बाहर अधिवक्ता के बयान को असंगत बताया है। उन्होंने कहा कि गलत बयान कर मामले में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक

0: बताया कि इस बयान के मीडिया में आने के बाद इसका सत्यापन कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय से ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं FSL अब गृह विभाग के नियंत्रण में काम करेंगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस मैनुअल में संशोधन करते हुए FSL की जिम्मेवारी बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह विभाग को सौंप दी गई है। साथ ही फिंगरप्रिंट ब्यूरो, हैंडराइटिंग ब्यूरो और फोटो ब्यूरो की कमान भी गृह विभाग को सौंप दी गई है। नई व्यवस्था के तहत नमूनों की जांच संबंधित FSL निदेशक के नियंत्रण में होगी। अधिसूचना के अनुसार FSL के प्रशासनिक, कार्यपालक और वित्तीय मामले भी गृह विभाग को सौंप दिए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि स्कूलों और खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि जिन स्कूलों और खेल मैदानों तक जाने के लिए सुगम मार्ग नहीं है, उनके लिए पहुंच पथ भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में 20 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव की समय सीमा तय करना संभव नहीं है।
1: पंचायत के चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं, परिसीमन के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। दोनों ही काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है, तो टाइमलाइन हम कमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया जाना है निर्वाचन आयोग को, सारा सहयोग दिया जा रहा है और पूरी कोशिश है विभाग की ओर से भी कि सही समय पे काम पूरा हो परिसीमन का और उसके उपरांत चुनाव कराया जाएगा।
0: गौरतलब है कि वर्तमान पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर तक खत्म हो रहा है। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या 8053 से बढ़कर 13,000 होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18% अधिक राजस्व संग्रह हुआ है। उन्होंने राजस्व संग्रह विभागों की समीक्षा बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक कुल 19,253 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया जा चुका है। यह संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18% से अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संग्रह में और तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में सुबह 10:30 बजे से सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज प्रदेश में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान आज ही के दिन प्रदेश के 7 विद्यार्थी पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। एक रिपोर्ट।
1: ग्यारह अगस्त 1942 का दिन पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए कुछ छात्र सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। मंजिल थी सचिवालय पर तिरंगा फहराना। कदम आगे बढ़े, गोलियां चली और तिरंगे को थामे 7 वीर छात्र शहीद हो गए। इन शहीदों में उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार और राम गोविंद सिंह शामिल थे। आज भी पटना का शहीद स्मारक उन अमर युवाओं की कहानी कहता है जिनके लिए तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि आजादी का सपना था। इन 7 शहीदों की याद में

0: हर साल 11 अगस्त को प्रदेश में शहादत दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
1: इधर शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनके 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को आज ही के दिन वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क और रेल संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही राजगीर का विकास ज्ञान और नवाचार नगर के रूप में किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि बिहार की प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास पर 2130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर प्रदेश के पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने बोधगया और राजगीर के विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन GIM वर्ष 2015-16 से लागू है। इसका मकसद खराब हो चुके वन और गैर वन इलाकों को फिर से ठीक करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि GIM के तहत वर्ष 2015-16 से अब तक 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1,84,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर वनों को फिर से विकसित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद होती है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था।

श्री गोयल ने बताया कि जैम पोर्टल को नया स्वरूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने खरीदारों और विक्रेताओं को सहायता के लिए देशव्यापी 5 अंक वाला शॉर्ट कोड 14550 जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, छूटे पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी। हिंदुस्तान ने झारखंड में छात्र आंदोलन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, झारखंड विधानसभा तक पहुंचे उग्र छात्र, लाठीचार्ज। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर प्रमंडल में गुरुकुलम विद्यापीठ, बक्सर से शुरुआत। दैनिक भास्कर लिखता है, यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की इस हफ्ते आएगी। आज अखबार ने पटना में तिरंगा यात्रा की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, 14 करोड़ लोगों की जन भागीदारी है हर घर तिरंगा अभियान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने का समय 2028 तक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, भरत तिवारी प्रकरण में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश में भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और शहादत दिवस पर आज पटना के शहीद स्मारक पर हो रहा है राजकीय समारोह का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: उर्दू शेर व अदब की।
1: सामईन, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गजल। आज हम बात करेंगे खुदीराम बोस की। आज खुदीराम बोस के यौम शहादत है। आज हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के सबसे कम उम्र के शहीद जो हैं उनके शहादत है, यौम शहादत है। वो बंगाल की तकसीम के बाद कम उम्री में जुगांतर और इनोलेशन समिति जैसे इनकलाबी तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। 30 अप्रैल 1908 को वो अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में जालिम बरतानवी जज डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की कोशिश किया था उन्होंने। और 11 अगस्त को इसी मामले में जब मुजफ्फरपुर की जेल 1908 में उनको जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। वजह यह थी कि जब उन्होंने बमबाजी की थी, उस पर निशाना किया था उसकी गाड़ी पे, तो उस वक्त डगलस के बजाय उनकी दो खवातीन थीं जिनकी उसमें मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 बरस थी, जिसकी वजह से उन्हें सबसे कम उम्र की शहदा की शक्ल में शुमार किया जाता है। बताया जाता है कि खुदीराम बोस के इस कारनामे के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि उनको बचाया जा सके, लेकिन चूंकि ये हक बात थी, उन्होंने गलती की थी, उन्होंने गुनाह किया था, इसलिए उनको ये सज़ा दी गई। हालांकि खुदीराम बोस की पैदाइश 3 दिसंबर 1889 में हुई थी हसीब हैब्यू जिला के मेदनापुर में, बंगाल के मेदनापुर में। उनके वालिद का नाम था तुराक्यानाथ बोस। तो ये थी आज की बात। चलिए अब सुनते हैं आज का मुजाकरा। मुजाकरे का आज का उन्वान है नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में उनका मखसूस अंदाज़ बयां, इस मौजू पर। और

0: के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो बात कहते हैं, जो आवाम के दिल से बात निकलती है, वो कहते चले जाते हैं। नज्म मुफलिसी को ले लीजिए, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी। तो इस तरीके से अब देखिए कि इसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत हो। गरीबी, दुख, दर्द, भूख सब ऐसे अल्फाज हैं जो हर आदमी खेत खलिहान में भी बोलते हैं। तो खेत की शायरी, खलिहान की शायरी इनकी शायरी है, जिसको आम लोग समझ सकते हैं। वो जिंदगी के हर पहलू पर गहरी दिलचस्पी से गौर करते हैं, शिद्दत से महसूस करते हैं और फिर उसे शायरी का जामा पहना देते हैं।
1: तकीर आलम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शायर की मकबूलियत के लिए उसकी शायरी में किन अनासिर का पाया जाना ज़रूरी तसव्वुर किया जाता है, और नज़ीर अपनी शायरी में इस मुनासबत से कहाँ तक कामयाब हैं।
2: देखिए, इसमें हम आपको पहले मजनू गोरखपुरी
1: जी
2: साहब का बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ बताते हैं। उन्होंने जो कहा है, नज़ीर की शायरी अपने अहद की जामे और ज़िंदा तस्वीर है। नज़ीर का कलाम अपने वक्त और अपने माहौल का आईना है। वाकयात व हालात और रसूम व रवायात की जैसी ज़िंदगी से मामूर तस्वीरें नज़ीर ने हमको दी हैं, वो उर्दू शायरी के हिस्से की चीज़ न थी। इसलिए नज़ीर से कबल की उर्दू शायरी पर बजा तौर पर अंगुश्त नुमाई होती रही और उसके तंग दामानी और तकलीदी पहलुओं को हदफ मलामत बनाया जाता रहा, लेकिन नज़ीर के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के सबसे बड़े नाक़िद, जो जल्दी किसी शायर की तारीफ नहीं करते, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। उन्होंने तो गज़ल को कह दिया कि नीम वहशी सिन्फ़ सुखन है, लेकिन कलीम जैसा नाक़िद अगर किसी शायर के बारे में कुछ कहे तो वो तो सनद की हैसियत रखता है। कलीम साहब ने कहा, नज़ीर अकबर आबादी का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर दूसरी जानिब नियाज़ फतेहपुरी ने कहा, इनके यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू के जहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है। ठीक उसी वक्त शमसुर रहमान फारूकी साहब ने, जो जदीदियत और माँ बाद जदीदियत के अलम्बरदार हैं, जिससे दूर दूर का भी रिश्ता नज़ीर का नहीं बनता, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। आज के हालात के मुताबिक अगर हम देखते हैं नज़ीर के पीरियड को, आपको ऐसे देखना होगा किसी शायर को जांचने और या परखने के लिए उसका अहद क्या है, उस वक्त के हालात, सियासी हालात क्या थे, उस वक्त के आवामी हालात क्या थे, उस वक्त के माली एतबार क्या थे, उस वक्त का तारीखी पहलू क्या था, तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे तभी किसी शायर के बारे में हम सही राय कायम कर सकते हैं। यही वजह है कि शम्सुर्रहमान फारूकी साहब का ये जुमला नज़ीर पे बहुत देर तक चल नहीं पाया। बाद में फिर कलीम साहब ने जगह कह दिया, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। तो इसका मतलब है कि नज़ीर वाकई उर्दू शायरी के सितारा है और अवाम में मकबूलियत उनको है ही। आने वाले वक्त में क्या होगा कहना शायद गैर मुनासिब है फिलहाल।
1: इम्तियाज करीमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में कौमी यकजहती यानी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी मिलती है।
0: बिल्कुल, तौकीर साहब ने अभी बताया कि नाकिदीन ने भी उनको एक अजीमुल मुर्तबत शायर कहा है,
1: तस्लीम किया है
0: जी। लेकिन आपने जो कहा कि कौमी यकजहती के नजरिए से भी उनका मकाम, यकीनन हम कह सकते हैं कि उनकी नज़र पूरे हिंदुस्तान पर थी और उनको खालिस हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है। वो हिंदू मुसलमान के गम में, मातम में शरीक होते थे। अगर उन्होंने ईद पर नज़्म लिखी है तो होली पर भी नज़्म लिखी है।
1: बिल्कुल,
0: एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गुरु नानक को भी नज़र अकीदत पेश करते हैं। तो इस तरीके

0: थे, कहा जा सकता है कि वो कौमी यकजहती के शायर थे, वहाँ कोई तफरीक नहीं था। उनकी शायरी का असल मकसद इस्लाह मुआशरा था, और जहाँ भी उन्होंने अच्छाई और खूबी देखी उसको अपने शायरी का मौजू बनाया, जिंदगी के बारे में भी लोगों को बताया। बल्कि शेर का एक मिसरा तो घर घर में बोला जाता है, समझा जाता है, मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तो ये बंजारा नामा से है। गांव की औरतें चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, वो खेत में धान काट रही हो, फसल उगा रही हो, लेकिन उनके मुंह से जब वो कभी गुस्से में होती हैं या किस कोई मिसाल पेश करना चाहती हैं तो शेर के इस मिसरे को ज़रूर पेश करती है कि सब ठाट पर आ रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उन्होंने इस शायरी में ये बता दिया कि ये दुनिया चंद रोज़ा है, बंजारे की तरह से खाना बदोश की ज़िंदगी है, कभी यहाँ और कभी खेमा उठा करके फिर दूसरी ज़िंदगी की तरफ जाना है, इसलिए हिर्स व हवस को छोड़कर असल की तरफ आना चाहिए, और ये जो दुनियावी ज़िंदगी है इसको एक मुसाफिर की हैसियत से समझना चाहिए और बरतना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी
1: तमाम
0: मज़ाहिब पर अपनी शायरी की और उसकी खूबियों को भी बयान किया। होली पर लिखा, ईद पर लिखा, उसी तरीके से गुरु नानक की तारीफ की, दूसरे मज़ाहिबी रहनुमा पर भी अपनी बातें की। तो हम कह सकते हैं कि वो खालिस हिंदुस्तानी शायर थे, वो हिंदू मुसलमान के गम और मातम में बराबर के शरीक थे, समाज की बुराई से वो तकलीफ़ महसूस करते और अपनी शायरी में ढालते।
1: जनाब इम्तियाज़ करीमी ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात की तायद की कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी नज़ीर ही के ज़िम्मे रही। अब हम प्रोफेसर तौकीर साहब आपकी जानिब आते हैं। नज़ीर अपनी नज़्म बंजारा नामा के ज़रिए दुनिया की बेसबाती का पैगाम देते हैं। अपने सामीन के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसबाती और इंसानी अमल के दरमियान का ताल्लुक दरअसल है क्या?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नज़ीर के यहाँ ये सब चीज़ें इसलिए मिल जाती हैं कि ये पहले शायर हैं जिनका कोई उस्ताद है ही नहीं, तो जाहिर है वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो आपने भी पूछा। नज़ीर अकबर आबादी मीर तकी मीर के हम असर हैं, जब हम असर हैं तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में नुमाइंदा शेर भी आ जाएगा। और इसी तरह से जो बेसबाती का आपने जिक्र किया, हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा जिसका उन्वान है आगरा बाजार, और इसको सबसे पहले जामे मिल्लिया इस्लामिया में पर्दे पे खेला गया और दिखाया गया। उसमें इन तमाम चीज़ों की वजाहत आगरा बाजार में हो गई। हालांकि आगरा बाजार जिस वक्त लिखा जा रहा था उस वक्त हबीब तनवीर के दिमाग में ये बातें जरूर थी, वो नज़ीर को बिल्कुल सामने रखे हुए थे और सामने रख के लिख रहे थे, इसलिए कि नज़ीर पैदा हुए दिल्ली में। वो तो जब वहाँ 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो उस वक्त वो अपनी वालदा को ले करके अकबराबाद, उस वक्त का अकबराबाद बाद का आगरा, वो चले गए और फिर वहीं के होके रह गए। और जब भी उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना वतन हमेशा बताया आगरा। ये तो मौर्रिख लिखते हैं कि वो दिल्ली में पैदा हुए, ऐसे ऐसे ये सब वजह थी जो यहाँ से वो निकल करके चले गए। इसीलिए जो बंजारा नामा का आपने जिक्र किया, जो अभी जैसा कि हमारे बीपीएससी के मेंबर जनाब इम्तियाज़ करीमी साहब ने एक शेर पढ़ के सुनाया, ठाट पड़ा रह जाएगा, ये बहुत मशहूर जुमला है बंजारा नामा में जो नज़्म है उसका। और इसीलिए हम लोग जब बराबर कहते हैं कि साहब क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं, क्या अंगारा, अब ये जो शायर इस तरह की बात करेगा चावल की मूठ की अंगारा की, जाहिर है धुआं की, तो ये सब सारी चीज़ें नज़ीर ने अपनी शायरी में लपेट लिया है। और उसी चीज़ को फिर भी कई जगह कहा उन्होंने, आदमी नामा में कहा, हाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर है, अच्छा भी आदमी कहता है ए नज़ीर, तो ये सारी चीज़ें नज़ीर क्या ही मिलती है, दूसरा शायर क्या तो है नहीं। तो जाहिर है कि तमाम खूबियाँ नज़ीर की शायरी में हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमें मिल जाती हैं, तो बेसबाती वगैरह सब इसमें आती हैं।
1: तौकीर साहब के इस जवाब के बाद, बेसबाती अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो दुनिया की किसी भी चीज़ से उसकी दिलबस्तगी मुमकिन नहीं है। इम्तियाज़ करीमी, हम आपकी जानिब मुखातिब हैं, ये जानना चाहेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आकाशवाणी का ये पटना केंद्र मीडिया।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एकै क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
3: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं आनंद लीजिए अब

फिल्म संगीत का कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म हीरो हिंदुस्तानी के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है राहत इंदौरी ने, संगीत निर्देशन अनु मलिक का, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम जारी है इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके।

यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

फिल्म तमन्ना में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को, गीतकार थे राहत इंदौरी और संगीतकार अन्नू मलिक। लीजिए अब सुनिए फिल्म मैं तेरा आशिक का ये गीत अनुराधा पौडवाल और बाबुल मेहता की आवाजों में। गीतकार राहत इंदौरी और संगीतकार नरेश शर्मा।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आनंद ले रहे हैं आप फिल्मी गीतों का। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राहत इंदौरी के लिखे हुए कुछ गीत। इसी क्रम में यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, फिल्म तमन्ना से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीतकार अनु मलिक।

कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म याराना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिल्म में गीतों के इस कार्यक्रम में आज हमने आपको राहत इंदौरी के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए। लीजिए अब सुनिए बज्जी का कार्यक्रम अंगना।

अंगना सुने वाला साफ श्रोता के हम गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है।

0: खुशी के बड़ा महत्व होइया। खुशी आदमी के तब भेटैया जब हुनका मन मुताबिक कोनो काम पूरा होइया। हर काम आदमी के मन के मुताबिक होए, जे चाहे से भेट जाए, ये जरूरी नहीं है। एकरा लेल मन के उदास कैला से कोनो फायदा नहीं है, उल्टे ऐसे नुकसाने होइया। मन तनाव में रहैया आ जल्दी कोनो काम में मन नहीं लगैया। ऐ लेल कोनो परिस्थिति में उदास नहीं रही। सकारात्मक सोच रखेत अपन इच्छा के पूर्ति के लेल अपन मन मुताबिक काम के पूरा करे के लेल प्रयास करी आ खुश रही। खुशी से आदमी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आवैया आ संगे ऐसे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक यानी निम्न प्रभाव पड़ैया। ओना खुश रहना आदमी के अपन स्वभाव भी होइया। बहुते एहन आदमी हतन जिनका जीवन में जे भेटल है हुनका पास जेहे है वही में ऊ खुश रहत हतन। अब बहुत आदमी एहनो है जिनका जीवन में बहुत कुछ भेटल है आ ओकरा बादो ऊ खुश नहीं रहत हतन। एकरा पीछे भी कारण है। हुनका भी बहुत कुछ होला के बादो कुछ एहन बात के कमी होइया जैसे ऊ उदास रहत हतन। ऐ लेल फिर कहत हती सब कुछ सबके भेट जाए, सब कुछ मन मुताबिक होए, आदमी के जीवन में कोनो बात के कमी नहीं होए, एहन शायदे होइया। इस सब बात पर विचार करेत हरदम खुश रहे के प्रयास करे के चाही। खुशी के बारे में एगो आदमी के की कहना है आओ सुनेत हती।
1: खुशी सबके अपन अपन होए है। केकरो रुपया कमावे में खुशी मिले है तो केकरो खूब खर्चा करे में, केकरो घूमे फिरे में खुशी मिले है तो केकरो अच्छा अच्छा पहने ओढ़े में खाए पिए में। ए तरह से जब केकरो इच्छा के अनुसार ओकर काम हो गेल जे चाहल से मिलल तो ओय में खुशी मिलल। विद्यार्थी सब अब कोई कंपटीशन के तैयारी करे या ओय में सफल हो गेल तो ओकरा खुशी के ठिकाना न रहे है। माय बाप के लेल ओकर बेटा बेटी पढ़ लिख लेलक, सबके नौकरी चाकरी शादी विवाह हो गेल तो ई हुनका लेल सबसे बड़ा खुशी भेल। ओना ही किसान सबके देखू, ओकर फसल अच्छा भेल तो ओकरा फसल से खुशी मिले या। अगर एक लाइन में कहल जाए तो इच्छा के पूर्ति से खुशी मिले है। पर इहो बात है कि इच्छा के कोनो अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा भेल नहीं कि दूसरा इच्छा मन में जागे लगल है। एक काम पूरा भेल तो दोसर काम सामने आ गेल। ई सब जीवन भर चलत रहत। अइला हम तो यही कहब जीवन में अपन इच्छा के पूरा करे प्रयास हमेशा करे चाहे। लेकिन जे जीवन में भेटल है जो भगवान देलक है आदमी के ओय में खुश रहे के चाहे। काहे के सबसे बड़ा खुशी संतुष्टि में है जे लोग के जल्दी नहीं होई है।
0: ता जीवन में जे भेटल है ओई में खुश रहत, आगे अपन इच्छा के पूर्ति के लेल जे संभव हो उ प्रयास करी। ता खुशी के महत्व के देखत जीवन में खुश रही स्वस्थ रही। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावे हती ब्रजेश कुमार सुमन के गायल ई झूमर गीत।

हर साल 3 जुलाई के दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनायल जाइए। एकर मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से होए वाला हानिकारक प्रभाव के बारे में लोग सबके बीच जागरूकता फैलावे के है। देखू, प्लास्टिक एक एहन पदार्थ है जे जल्दी नष्ट नहीं होइया। एकरा जमीन में गाड़ देल जाए भी तो ई सैकड़ों वर्ष लगला के बादो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होइया। प्लास्टिक से कई तरह के नुकसान होइया। ई पर्यावरण के नुकसान तो पहुँचेबे करैया, संगे एकरा से हमर स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ैया। जानवर भोजन समझ के प्लास्टिक के खा जाइया, जैसे जानवर के मृत्यु हो जाइया। प्लास्टिक से एहन प्रदूषण निकलैया जे

0: पेड़ पौधा से लेके मनुष्य के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान पहुँचावैया। प्लास्टिक के जलावे पर प्रदूषण फैलैया। इतने नए प्लास्टिक नाला के बंद कर दैया, जैसे नाला के पानी नहीं बह पावैया। नदी समुन्दर में बेसी तर कचरा प्लास्टिक के पायल जाइया। एहि तरह से देखल जाए तो प्लास्टिक हर तरह से नुकसान पहुँचावैया। देखल जाए तो हम सब प्लास्टिक के उपयोग बेसी तर बैग के रूप में करत हती। बाजार से कोनो सामान लावत हती तो प्लास्टिक बैग में लेके आवत हती। तो हम सब प्लास्टिक के बैग के उपयोग करे से या प्लास्टिक के कोनो सामान के उपयोग करे से बची। अगर कोनो सामान बाजार से लावत हती तो अपन कपड़ा वाला झोला में लेके आई। दुकानदार के भी प्लास्टिक बैग में कोनो सामान देवे से परहेज करे के चाही। आ सामान देवे के लेल कपड़ा के झोला या कागज के ठोंगा के उपयोग करे के चाही। एहि तरह से प्लास्टिक के बैग आदि के उपयोग करे से बची। जैसे प्लास्टिक से होय वाला हानि से हम सब बच सकी आ कोनो तरह के ऐसे केकरो नुकसान नहीं पहुँचे। चाहे वो पर्यावरण हो, जीव जंतु हो, माटी आ पानी हो या नदी नाला समुन्दर। तो एक बार फिर कहत हती, प्लास्टिक के प्रयोग करे से सब कोई बची। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त अपने के सुनवावत हती रेणु सिन्हा के खिस्सा राधा भौजी।
1: श्रोता भाई बहन, आई हम अपने के अंगना में उपस्थित हती एगो कहानी लेकर। हमर कहानी के शीर्षक है राधा भौजी। गोपाल बाबू के लड़का कृष्ण कुमार बड़ा होनहार और सहज स्वभाव के हतन। पढ़े लिखे में बड़ा तेज हतन। गांव के स्कूल से ही कृष्ण कुमार पढ़लन, बाकी प्रथम श्रेणी से ही पास करत रहलन हा। कृष्ण कुमार के बाबूजी और माई प्रेम से किशन कहत रहथिन। यही से गांव भर में सब कोई हुनका किशन कह के पुकारे लागल। किशन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गेलन और बोकारो शहर में लोहा के कारखाना में नौकरी भी करे लगलन। शहर में नौकरी करत रहत किशन, बाकी समय निकाल के गांव अपन माई बाबूजी से भेंट करे आ जात रहत। एक बेर किशन जब शहर से गांव अयलन तो ममुहर जाय के लेल कहलन वो अपना माई से। तो हुनकर माई कहलथिन जा मामा मामी से भेंट कर लीह आ बूढ़ नानी हव भेंट कर ल जाके। केकरो जिंदगी के कोनो ठिकाना न है, उ तब पाकल आम है, कखनी चू जतै कोनो भरोसा न है। यही से जाकर भेंट करिए आब। किशन खुशी खुशी अपन ममुहर के गांव जाय के लेल जतरा कैलन आ पहुँच गेलन अपन ममुहर गांव। किशन जब गांव में पहुँचलन आ रास्ता से जात रहत त गांव के खेत खरिहान के सुंदर दृश्य देख के मन बड़ा खुश भेलन। कहाँ शहर आ कहाँ ही गांव, लगत है जैसे प्रकृति चारों तरफ अपन सुंदर दृश्य में बसत हतन। लाल लाल लीची के फल आ हरियर हरियर सुंदर सुंदर आम आ कटहल के गाछी देखते सबके मन खुश कर देवे। उ गांव में एगो आम के गाछी इतना सुंदर फरल रहे कि हर आदमी उ गाछी के देख के लोभा जात रहे। किशन भी उ गाछी के देखते आगे बढ़ल जात रहत कि इतने में चार पाँच लड़की के झुंड उ गाछी में घूमत देखाइत दिलन। उ लड़की के झुंड में एगो लड़की इतना सुंदर रहे कि किशन उ लड़की के देखलन त देखते रह गेलन कुछ देर तक। रास्ता भर ये सोचत रहलन कि किनकर लड़की है पता लगावे के चाही। किशन जब अपना नानानी के यहाँ पहुँचलन तब मामा मामी और नानी सबसे बहुत प्रेम से मिलन और सबके गोर लगलन आ स्नेहगर आशीर्वाद पैलन। एक दिन जब किशन अपना नानी के पास बैठल रहत त गांव के सुंदर दृश्य के आम और लीची के गाछी के शोभा के बखान करे लगलन और नानी से कहलन गे नानी, तू जनैत हते आम के गाछी में चार पाँच गो लड़की सब घूमत रहे, जे में बड़की बड़की सुंदर आँख वाली सबसे सुंदर एगो लड़की रहे, उ लड़की कौन है? त किशन के नानी कहलथिन रे किशन, केकरा बारे में तू कहत हत? उ त जमींदार रामजी बाबू के लड़की है राधा, ओकरे बारे में। ई गांव में सबसे सुंदर हुनके लड़की है, किशन बड़ा खुश होके नानी के गोर दबा

लगलन आ नानी से कहलन, गे नानी तू बात चलाबा, हम उहे लड़की से शादी करब। तो नानी कहलथिन, बबुआ तू कहाँ इंजीनियर आ उ लड़की भले ही सुंदर त है, बाकी पढ़ल लिखल न है, कैसहूँ पढ़े लिखे के जानत है और गांव के स्कूल से सातवां आठवां पास है। तो किशन कहलन, गे नानी कम पढ़ल लिखल है तो की भेले, हम हुनका पढ़ा लेब, जितना पढ़तन उतना हम पढ़ा देब। तो नानी कहलथिन, ठीक है तू कहत हत तो बात चलबत हती। तो ये तरह से नानी के आ मामा के रामजी बाबू से बातचीत कैला पर शादी के दिन भी तय हो गए। इतना सुंदर आ सहज स्वभाव वाला लड़का आ नौकरी है तो इंजीनियर, भला कौन बेटी वाला न चाहते अपना बेटी से शादी करे के। रामजी बाबू खुशी खुशी तैयार हो गेलन अपन लड़की से शादी करेला। बाकी एक बेर किशन के माई बाबूजी एकर विरोध कैलन कि कम पढ़ल लिखल लड़की से तू ब्याह न कर, तब भी किशन न मानलन आ कहलन कि बाबूजी कोई बात न है, शादी के बाद हम राधा के पढ़ा लेम। इस तरह से एक दिन किशन राधा से शादी करके ब्याह के बंधन में बंध गेलन। किशन हमर भैया के बचपन के दोस्त हतन, उ जब जब गांव अबैत जात हतन तो कुछ देर के लेल ही सही हमरा यहाँ जरूर एतन। शादी करके जब उ राधा भौजी के संग जात रहत शहर तो हमरा यहाँ भी अलन और कहलन कि सीमा देख अपना भौजी के हम शादी कर ले ली है। भौजी यानी राधा भौजी जे देखे से देखते रह जाए, इतना सुंदर जे लागे कि भगवान हुनका के फुर्सत के समय में बनौले होतन। बाकी अति सुंदरता के बाद हुनका में देहाती अल्हड़पन बेसी रहे, न रहन सहन के ढंग रहे और न केकरो से कैसे बातचीत करे के चाही एकरो तरीका न रहे। हम ये बात किशन भैया से कहती, बाकी उसे पहले उहे हमरा के कहलन कि ये सीमा तू जे कहबे से हम बुझत हती, तू अपना भौजी के कुछ रहन सहन के ढंग आ बोले चाले के यानी केकरो से कैसे बातचीत करे के चाही तनी सिखा द। हम कहली, हो भैया ए लेल तोहरा कम से कम एक सप्ताह रुके के पड़तब। अच्छा ठीक है हम रुकब, किशन भैया कहलन। एगो बात रहे राधा भौजी में, हुनकर स्वभाव बहुत ही मिलनसार रहे, तनिको न बुझायल कि हमर अपन भौजी न हतन। बहुत अच्छा सील स्वभाव आ कोई चीज सीखे के प्रवृत्ति भी रहे, कोई भी रहन सहन के ढंग आ बातचीत करे के सिखाई तो जल्दी सीख लत, न तो केकरा आप कहूँ कि केकरा तुम कहूँ, एकरो ढंग न रहे हुनका में। खैर एक सप्ताह ऐसा ही ननद भौजाई के हंसी ठिठोली में समय बीत गेल और किशन भैया राधा भौजी के लेके शहर चल गेलन। शहर गेला पर किशन भैया राधा भौजी के लेल घर ही में मास्टर बोला के पढ़ावे लगलन और अपनो समय निकाल के हुनका के पढ़ावे लगलन। समय बीतत गेल, राधा भौजी मैट्रिक पास क गेलन और ओकरा बाद बीए भी पास क गेलन। राधा भौजी इतना लगन आ मेहनत से पढ़ाई कैलिन कि हरदम प्रथम श्रेणी से ही पास कैलिन। बीए पास कैला के बाद किशन भैया भौजी के लेके गांव जात रहत त एक दिन के लेल हमरो यहाँ आयलन। जब राधा भौजी हमरा दरवाजा पर गाड़ी से उतरत रहत त जब हम उनका देखली त देखते रह गेली, हुनका में उ परिवर्तन हो गेल रहे कि लागते न रहे कि उहे राधा भौजी हथिन। भगवान सुंदरता त दिले ही रहथिन और पढ़ला लिखला आ शहर में रहला के कारण खूब स्मार्ट लगते रहथिन। हमरा मुँह से निकलिए गेल कि वाह भैया तू तो भौजी के खूब स्मार्ट बना देला, ये तो तनिको न लगत हथुन कि उहे राधा भौजी हथुन। बोले चाले में भी खूब फरहर हो गेलिन, सबसे बातचीत करत त तरीका से बात करत। इहे बीच में हुनका दुगो बच्चा भी हो गेल रहे, एगो लड़का आ एगो लड़की। हम कहली भौजी से जब एगो लड़का हो गेल त दोसर बच्चा न हो देती, ई त लड़की हो गेल। त राधा भौजी कहलिन, हे बबनी बिना लड़की के अंगना घर तनिको न शोभैया, ये लेल जितना लड़का जरूरी है उतना ही लड़की भी जरूरी है। हम तो राधा भौजी के लड़की के प्रति सुविचार सुन के बहुत खुश भेली। ओकरा बाद किशन भैया आ राधा भौजी एक दिन रह के हमरा यहाँ गांव चल गेलन अपना माई बाबूजी से मिले। ओकरा बाद किशन भैया राधा भौजी के साथे अपना ससुराल भी गेलन, वहाँ भी सबसे भेंट कैलन, ममहर में भी मामा मामी या नानी से भेंट कैलन। सब कोई राधा बेटी या किशन भैया के सुखी सम्पन्न देख के बहुत खुश भेल। कुछ दिन गांव में रहला के बाद उ लोग शहर लौट गेलन। वहाँ गेला के बाद राधा भौजी बीएड के पढ़ाई कैलिन और सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर काम भी करे लगलिन। साथे साथे टोला मोहल्ला में जाके लड़की या

0: महिला सबके पढ़े लिखे के लेल जागरूक करे के काम भी करे लगलन। यहाँ तक कि जे लड़किया महिला में हस्तकला के हुनर रहे, जैसे पापड़, चिप्स, अदौड़ी, बड़ी, अचार, मुरब्बा बनावे के, ओकरों में जागरूकता लावे के कोशिश कैलन। जे लड़की में सिलाई, कटाई, बुनाई आ कढ़ाई के हुनर रहे, ओकरो सबके प्रेरित कैलिन कि तू सब अपना हुनर के प्रचार प्रसार कर आ लघु उद्योग खोले के चाहबू तो सरकार भी तोरा सबके मदद करी। यही तरह से काम के व्यस्तता और बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के कारण किशन भैया राधा भौजी के गांव अयला कुछ दिन बीत गेल। तो राधा भौजी के बाबूजी एक दिन गेलन शहर बेटी से भेंट करे। बाकी राधा भौजी तो स्कूल में पढ़बित रहथिन, हुनकर बाबूजी स्कूल में ही चल गेलन आ बेटी के पढ़बित देख के बहुत खुश भेलन। जब राधा भौजी के पता चलन कि हुनकर बाबूजी आयल हथिन तो वो बाहर आकर बाबूजी के गोर लगलथिन। बाबूजी हुनका सस्नेह हृदय से आशीर्वाद दिलथिन आ कहलथिन, बेटी तोहरा ऐसन बुद्धि सब बेटी के भगवान संसार में देथुन। कुछ दिन बेटी के पास रह के हुनकर बाबूजी गांव लौट गेलथिन। गांव में राधा भौजी के बाबूजी अपना बेटी या दामाद के खूब प्रशंसा करे लगलन। अब गांव गांव में चाहे वो राधा भौजी के नैहर के गाँव हो, चाहे किशन भैया के ममहर हो और चाहे हुनकर अपन गाँव घर हो, सब जगह हर अंगना घर में हिनकर सबके चर्चा प्रशंसा पूर्वक होए लागल। इस तरह से नवयुवक आ नवजुवती सबके लेल किशन भैया आ राधा भौजी प्रेरणा के स्रोत बन गेलन।
1: राधा भौजी अखनी अपने रेणु सिन्हा के ई खिस्सा सुनित रही। कार्यक्रम में अब समय है बात अपन धरोहर के। बात अपन धरोहर में आई बात अपन देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित विश्व धरोहर पुरापाषाणिक आवासीय स्थल भीम बेटका के। भीम बेटका क्षेत्र अपन देश भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनायल गेल शैल चित्र के लेल प्रसिद्ध है। ये चित्र पूरा पाषाणिक काल से लेके मध्यकाल समय तक के मानल जाइया। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चिन्ह है। ये स्थल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित है। ये क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित कैलक। एकरा बाद 2003 में यूनेस्को एकरा विश्व धरोहर स्थल घोषित कैलक। इस क्षेत्र में जे पूरा अवशेष मिलल है ओमे प्राचीन किला के दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख आ परमार कालीन मंदिर शामिल है। एहन मानल जाइए कि ई स्थान महाभारत के भीम से संबंधित है, यही से एकरा नाम भीम बैठका पड़ल, जे कालांतर में भीम बैठका हो गेल। ई क्षेत्र मध्य भारत के दक्षिण पठार के दक्षिण किनार पर स्थित विंध्याचल के पहाड़ी के निचला छोर पर है। अखनी अपने बात अपन धरोहर में बात अपन देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित विश्व धरोहर पुरापाषाणिक आवासीय स्थल भीम बेटका के बारे में जानकारी प्राप्त करत रही। एकरा से जुड़ल औरो कते बात है, लेकिन बात अपन धरोहर में आई बात बस इतनी। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आ गेली है। अब शब्द सरिता। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मानी। बज्जिका के एगो शब्द है खोतिया। एकर माने होइया कर्ज, जना लोग कहत हतन अपने एना काहे कहत हती, हम अपने के कोनो खोतिया धार ले हती की, यानी कि हम अपने के कोनो कर्ज धार ले हती की।

खुतिया के माने भेल कर्ज। ओकर बाद एगो शब्द आयल है अरसा, एकर माने होइया बीता हुआ लंबा समय, जेना लोग कहे थतन अरसा के बाद अपने से भेंट भेल है, यानी लंबा समय के बाद अपने से भेंट भेल है। त अरसा के माने भेल बीता हुआ लंबा समय। ओकर बाद एगो शब्द है अहदी, एकर माने होइया आलसी, जेना लोग कहे थतन अपने बहुत अहदी हती, कोनो काम जल्दी नहीं करत हती, यानी कि अपने बहुत आलसी हती, कोनो काम जल्दी नहीं करत हती। त अहदी के माने भेल आलसी। ओकर बाद एगो शब्द है भगल काछना, एकर माने होइया बहाना बनाना, जेना लोग कहत हतन अपने के ये काम नहीं करे के है त नहीं करू, लेकिन भगल नहीं काछू, यानी कि अपने के ये काम नहीं करे के है त नहीं करू, लेकिन बहाना नहीं बनाऊ। त भगल काछे के माने भेल बहाना बनाना। आ अंत में एगो शब्द आयल है हदस, हदस के माने होइया भय या घबराहट, जेना किनको किनको बहुत ऊंचा पर से नीचे देखला के बाद हदस होय लगैया, यानी भय होय लगैया, घबराहट होय लगैया। त हदस के माने भेल भय या घबराहट। त ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर माने। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही, एकरा संगे बज्जिका कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकेत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004, ईमेल आईडी है akashwani.darbhanga@gmail.com। तो अब कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता विनीत कुमार ठाकुर, संयोजक अमरनाथ प्रसाद के संग हमरा यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव के दू अनुमति एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

ये था बज्जी का कार्यक्रम अंगना। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पूर्व प्रसारित था।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। आप इस समय सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आज सुनिए शोभा गोटू की गाई हुई ये ठुमरी।

इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। आज की कलाकार थी शोभा गोटो। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश

0: देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
0: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
0: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
1: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
1: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
0: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
1: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
0: जी।
1: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
0: नशाखोरी से दूर रहें,
1: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
0: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
1: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
0: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
0: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था।

0: 559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्यपुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
2: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
2: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
2: वापस लो,
5: रॉलेट

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नौ।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को

सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: गांधी की
1: जय।
2: भारत माता की
1: जय।
2: भारत माता की।
3: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
5: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
6: भारत माता की
1: जय।
6: भारत माता की
1: जय।
6: भारत माता की
1: जय।
5: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
5: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
6: मारो,
5: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
6: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
6: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो।
6: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: कर दे, कर दिया
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।

0: General Dar.
1: Yes, sir.
0: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
1: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
0: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
1: Yes, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
0: क्या वार्निंग नहीं दी?
1: No. क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
0: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
1: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।

0: सब हंसेंगे।
1: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छे एकम छे,
0: छे एकम छे,
1: छे दुनी बारह,
0: छे दुनी बारह।
2: राहुल खेले नहीं आ रहे?
1: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छे ती अठारह,
0: छे ती अठारह,
1: छे चौक चौक।
3: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
4: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
1: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
4: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
1: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
4: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
1: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
4: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
3: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
0: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
1: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
0: करता है पर पहाड़ा।
1: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
0: फिर पहाड़ा कब?
1: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
0: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
1: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
0: पक्का?
1: पक्का।
0: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
1: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
0: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
1: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
3: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इस समय आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगली पेशकश है फिल्म संगीत। हमारे साथ बने रहिए 12:30 तक और आनंद उठाइए नए फिल्मी गीतों का। शुरुआत हम कर रहे हैं बैड बॉय फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं पायल देव, राज बर्मन और आकृति मेहरा की। गीत के बोल सब्बीर अहमद के हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओं, जो गीत हम आपको सुनवाना चाह रहे थे उसे हम सुनवाएंगे इस गीत के बाद, लेकिन अभी आप सुनिए फिल्म गदर 2 से हमने लिया है विशाल मिश्रा नीति मोहन की आवाजों में। गीत के बोल

श्रोताओं, अब हम वो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसे गाया है राज बर्मन, आकृति मेहरा और पायल देव ने।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आनंद उठा रहे हैं आप फिल्म संगीत का, और अभी जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म फाइटर से, आवाजें विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की थी, गीत के बोल कुमार के थे और संगीत विशाल शेखर का। लीजिए सुनिए फिल्म एनिमल में अरिजीत सिंह को, सिद्धार्थ के लिखे गीत हैं और संगीत बद किया है गरिमा ने।

फिल्म एनिमल में। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय सुन रहे हैं नए फिल्मी गाने।

ड्रीम गर्ल। इस फिल्म में अभी आप मीत ब्रॉस, सुनिधि चौहान और दानिश सावरी को सुन रहे थे। गीत के बोल रश्मि बैराग और संगीत मीत ब्रॉस का था। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जिसे हमने लिया है फिल्म रेड टू से। गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल।

जुबिन नौटियाल के गाए इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गीतों का यह सफ़र अब यहीं समाप्त हुआ। अगर फिर से आप आनंद लेना चाहते हैं नए गीतों का, तो इसके लिए श्रोताओं करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और वो इंतज़ार है शाम 5:30 का। आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो रहा है, श्रोताओं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लीजिए सुनिए रविवार 9 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। विशेषज्ञ अमरेंद्र कुमार अमर, संचालन संजय कुमार, प्रस्तुति असद दौद की।

0: को सशक्त भी किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि देश के समग्र विकास में क्या हमारी युवा पीढ़ी अपनी भूमिका को बखूबी समझती भी है? क्या विकसित भारत का लक्ष्य स्वीकार करने में हमारे युवाओं का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है भी? क्या हमारी युवा पीढ़ी देश के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए उनका निर्वहन भी कर पा रही है? इसी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवा चेतना को जागृत रखने का संकल्प दिवस। लिहाजा कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, आप श्रोताओं को उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं माई भारत दरभंगा के जिला युवा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अमरिंद्र कुमार अमर जी। आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका स्वागत। पहली बार आप आए हैं, नमस्कार। कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूं और धन्यवाद दरभंगा आकाशवाणी का जो मुझे आज आप लोगों ने आमंत्रण दिया। और मैं सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोगों की जो इश्यूज हैं जो आप बताना चाहते हैं हमें आज बताएं। और मैं बहुत ही नया हूँ इस जॉब में।
0: अच्छा,
1: और ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं यूथ के साथ कुछ संवाद रख सकूँ, उनके इश्यूज, उनके एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स को मैं भी साझा कर सकूँ।
0: अच्छा, एक हमारे श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लें। हेलो
2: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार,
2: मोहन पासवान, गांव बरसतपुर, पोस्ट बुरा, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा, बिहार, भारत से ही बोल रहा हूँ सर।
0: जी मोहन पासवान जी, क्या जिज्ञासा है?
2: जिज्ञासा है सर कि विकसित भारत और पूर्ण विकसित भारत का स्वरूप जानना चाहता हूँ सर, कि सर कितने पुराने मिल चलाने की योजना और कितने नए मिल, कितने प्रकार की खोलने की योजना है सर।
0: अच्छा,
2: पूरे दुनिया का लोग भारत देश के से शिक्षा और संपत्ति से पूर्ण विकसित बन गया सर, पर भारत में रहने वाले लोग और भारत देश अभी तक पूर्ण विकसित क्यों नहीं बन पाया सर? और सर हमारे देश के मजदूर किसान मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाकर नेताजी कर्मचारी जी अधिकारी पदाधिकारी मीडिया के लोग चाहते हैं पूर्ण विकसित भारत बने, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है सर? और सर की खेत खलिहान से लेकर गोबर पाथने वाली महिला पुरुष के बच्चे से लेकर सभी धर्म वर्ग के लोगों को संवैधानिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत किया जाए तभी विकसित भारत को चलेगा। और सर की युवा युवतियाँ अपने घरों खेतों से स्कूल कॉलेजों में पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त कर शिक्षित राज्य और शिक्षित राष्ट्र का दायित्व निभाया है, सरकार इस तरह के युवा युवतियों छात्र छात्राओं के लिए
0: क्या कर रही है,
2: क्या अपना काम कर रही है और दायित्व निभा रही है?
0: सबसे बड़ा सवाल तो आपने ये कर दिया है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है, उसकी बात चर्चा करेंगे। मोहन पासवान जी सुनिएगा, कार्यक्रम में हो सकता है कि जितनी हम चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके समाहित हो जाएं, है ना?
2: हाँ,
0: तो कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे मोहन पासवान जी, और हमारे दूसरे श्रोता जो जुड़ेंगे हम उनके भी कॉल लेंगे, है ना? बहुत बहुत जी धन्यवाद। मोहन पासवान जी जब भी आते हैं कार्यक्रम में, एक दो नहीं गुच्छे में 3-4-5 सवाल कर ही लेते हैं। खैर, सवालों का ही ये कार्यक्रम है
1: जी।
0: इन्होंने पूछा है कि मूलतः बातें कि अभी तक हम अगर विकसित नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, और विकसित ही नहीं पूर्ण विकसित बन पाएंगे उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। एक तो ये है मानदंड, ये हमें जो लगा सवालों से जो बातें आई कि उसके मानदंड क्या होंगे। दूसरी बात कि कितने कल कारखाने जो पुराने बंद हो गए थे उन्हें खोलने की ज़रूरत है
1: जी।
0: और नए कारखानों को बनाने की ज़रूरत है। और ये जो चिंता है मोहन पासवान जी की वो इसलिए भी है क्योंकि अगर कल कारखाने खुलते हैं और पुराने कारखाने अगर उससे फिर से पुनर्जीवन दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो हमारे युवा हैं ना
1: जी,
0: उनकी जॉब सिक्योरिटी उससे जुड़ी हुई है और देश आगे भी बढ़ता है। नई बात यह है कि क्षेत्र विशेष में रैयाम का चीनी मिल और एक और चीनी मिल खोलने की बात हुई है, सकड़ी का चीनी मिल,

0: जो बंद पड़ा था उसे फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये एक अच्छी बात है। आ जाते हैं उस सवाल पर, जब हम युवा कहते हैं ना
1: जी,
0: तो युवा कहने के साथ क्या अभिप्राय होता है
1: जी? ऐसा है कि युवा शक्ति जब हम लोग बोलते हैं या युवा जो बोलते हैं, तो जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि जो युवा की ऊर्जा है, जो ड्रीम है और एस्पिरेशंस है, जो आज के युवा हैं यही तो लीड करेंगे जब 2047 में हम लोग विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करेंगे।
0: अच्छा,
1: वो चाहते हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है सारे युवाओं से कि युवा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे अगर, तो वो जो लीडर बनेंगे आगे चल के, आगे 15-20 साल में अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ पे भी रहेंगे पोजीशन में एक लीडर रहेंगे, डिसीजन मेकर रहेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस होल कंट्री। और अगर युवा अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी 65% जनता युवा है, अगर ये चंक जो है ये अगर डेवलप करती है तो पूरा देश, पूरा बिहार, उनका समाज सब डेवलप करेगा।
0: सही बात है। शिक्षा का क्षेत्र, कौशल विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, उद्यमिता पर जोर दिया गया है, खेल जैसा क्षेत्र
1: जी,
0: जिसे कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब
1: जी,
0: है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में हमने चौथा स्थान प्राप्त किया
1: जी,
0: इतने सारे मेडल्स आए, देश का नाम गौरव बढ़ता है इससे
1: जी।
0: और खेल में आगे बढ़ने से रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं। तो जो जहाँ है, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह जहाँ भी युवाओं की भागीदारी है, वो सारी चीज़ें एक पहल के तौर पर शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति आई है 2020।
1: एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जैसे आपने बात की, तो इसमें हमारी सरकार ने एक नया, मतलब एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हम लोग स्किल की बात करते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो हमारी स्कूल में या शिक्षा में एब्सेंट थी पहले, लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे फ़ायदा होगा यूथ को कि अगर वो मार्केट में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाते हैं, तो उनको पहले से ही आइडिया रहेगा कि किस टाइप के उनके पास क्षमता है, किस टाइप की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिससे वो ईजिली जॉब फाइंड कर सकते हैं।
0: सही बात है। आज हम जब बात करते हैं युवा शक्ति की, जब हम कहते हैं कि युवा इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं आप अमरेंद्र कुमार अमर जी?
1: युवा के पास जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, ये हम लोग भी मतलब देखते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आने स्टार्ट हो जाती है, हमारा हेल्थ थोड़ा ख़राब होने लगता है, लेकिन जब हम लोग युवा हैं वी कैन अचीव आवर हाइस्ट पोटेंशियल। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता, ये सब पीक पे रहती है। और इस एज में अगर युवा कोई अपना काम करते हैं, कोई इंटर्नशिप, कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई उद्योग स्थापित करते हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत दूर आगे तक ले जा सकते हैं। आप देखिए, आज जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं मोस्टली यंग लोग कर रहे हैं, तो ये एज है सबसे अच्छा जिसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप इनोवेटिव हो सकते हैं, और यही जो क्षमता है युवाओं की, इसी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है कि अगर युवाओं को अगर अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए तो वो अपनी इस ऊर्जा का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, जिससे कि वो अपने परिवार का भी कल्याण कर सके और ओवरऑल पूरे देश का भी कल्याण कर सके।
0: अक्सर हमने देखा है, ये भी सुनते हैं समाज में, कहते हैं कि ये काम सरकार का है
1: जी,
0: तो सरकार जाने, यानी सरोकार रखे सरकार अपना, मेरा क्या है
1: जी, जी।
0: क्या ये सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए सही है?
1: देखिए, कोई भी समाज, देश या परिवार, इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आप परिवार का ही एक एग्जांपल लेते हैं
0: जी,
1: मान लीजिए कि वहाँ पे माता पिता, दादा दादी और बेटा और बेटी, सबका कुछ ना कुछ दायित्व है। अगर सब मिल के काम करते हैं तभी परिवार ऊपर जाता है। इसी तरह नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सरकार एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही है। बट एज ए यूथ और एज ए पब्लिक, जो हम लोग कॉमन सिटीजन है इस इंडिया डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, उसमें हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी उस अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से लें और हम हमसे जो हो रहा है हम उसमें सरकार को हेल्प करें, ताकि उनका जो ये सब इनिशिएटिव है वो 100% कंप्लीट हो।
0: एक जो दिक्कत है अमरेंद्र कुमार जी, कि पढ़ाई का मतलब नौकरी करना है
1: जी,
0: नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी करना है
1: जी,
0: है ना, एक तरह से अपने को स्थिर कर लेना कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सफल हैं
1: जी।
0: ये जो एक मानसिकता बन गई दशकों से
1: जी,
0: क्या इसको बदलने की ज़रूरत है?
1: मेरा ऐसा है कि सरकार के पास

0: लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उनके पास लिमिटेड बजट रिसोर्सेस हैं, तो इतना ज़्यादा जितने यूथ हमारी पॉपुलेशन है उन सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना अपनी तरफ से, सरकारी नौकरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा भी है, टुडेज यूथ शुड बी ए जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर, मतलब उन्हें जॉब खुद से क्रिएट करना है ना कि जॉब खोजना है, ताकि वो जॉब क्रिएट करें, कोई स्टार्टअप, कोई इंडस्ट्री खोलें, छोटा माइक्रो इंटरप्राइजेज खोलें, चाहे ताकि वो खुद से ही 10-50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार दे सकें।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: महाकांत सिंह हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से।
1: बताया जाए क्या जिज्ञासा है?
2: जिज्ञासा तो यही है सर कि 65% युवा है अपने देश में, 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का नारा दे रहे हैं। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम जो भी युवा है उनको खुद सशक्त होना पड़ेगा। सरकार के पास नहीं है तो छोटी मोटी रोजगार खुद चालू करें, गांव में देखते हैं कि ताश खेल खेल के टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारा देश विकसित भारत नहीं बनेगा।
0: जी ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि बहुत सारे यूथ अपने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो किसी और चीज़ में उस टाइम को व्यतीत कर रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन वही रहेगा कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जैसे इन्होंने राजस्थान से कॉल किया है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग का बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे, स्कीम होंगे, जो ऐसे यूथ हैं जो स्कूल से बाहर हो गए हैं, चाहे उनके पास अभी जॉब नहीं है, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव रहते हैं, स्कीम रहते हैं, चाहे उनको किसी कौशल विकास केंद्र में कुछ स्किल्स सिखा दिया जाए ताकि वो आगे चल के कुछ एम्प्लॉयमेंट ले सकें।
1: सही, इन्होंने एक और सही बात कही है कि सरकार के पास में जादू की छड़ी नहीं है
0: जी।
1: लेकिन मैं मानता हूं कि जादू की छड़ी है
0: जी, जी है,
1: है ना
0: जी।
1: और जादू की छड़ी काम भी करती है
0: जी,
1: लेकिन और जादू की छड़ी चल भी रही है
0: जी,
1: स्किल इंडिया है
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: सशक्त भारत को बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम है, नई शिक्षा नीति आई है
0: जी,
1: साल में 2 बार 3 बार आप एडमिशन ले सकते हैं
0: जी,
1: इतनी सुविधा हो गई, इतनी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी उसमें
0: मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है,
1: बिल्कुल मल्टीपल, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, छूट गई, दोबारा से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, विषयों का जो परिवर्तन है वो आप बीच में कर सकते हैं, इस तरह की शिक्षा नीति आई है। यानी कहीं से भी अब किसी ने भी अपने अभिभावक के दबाव में अमरेंद्र जी मैथमेटिक्स का चुनाव कर लिया
0: जी,
1: बाद में लगा कि नहीं ये गलत राह आपने पकड़ ली है
0: जी,
1: तो आपकी डिग्री जहाँ तक आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा
0: जी जी,
1: है ना। ऐसा नहीं है कि आपने क्यूट कर लिया, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की तो वो किसी काम का नहीं है
0: जी,
1: क्रेडिट
0: जी, क्रेडिट मिलेगा,
1: क्रेडिट स्कोर
0: जी,
1: इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है अमरेंद्र जी, क्या बताएं, ये जादू की छड़ी नहीं तो और क्या है, इसलिए मैंने कहा कि जादू की छड़ी है सरकार के पास में। हेलो
2: जी सर, हम दरभंगा के गांव की तरफ से बोल रहे हैं।
1: क्या नाम हुआ आपका?
2: मधुकांत।
1: जी मधुकांत जी, बताइए क्या जिज्ञासा है मधुकांत जी?
2: जिज्ञासा सर, युवाओं की आकांक्षाएं तो अनेक प्रकार की होती है, उनको पूरा करना सरकार की बात हो या आम पब्लिक की बात हो, वो सब तो बहुत दूर की बातें होती है
1: जी।
2: युवा खुद अगर मेहनत करे, अपने आप पर भरोसा करे, उसी को लेकर चले तो भविष्य बन सकता है।
0: आपने एक अच्छा अच्छा बात बताया कि युवा अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी तो बदल ही सकते हैं, देश की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और ये ऐसा है कि अगर युवा की क्षमता, युवा की जो ऊर्जा होती है, अगर उसको लेकिन सही डायरेक्शन में उन्हें लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है जी जी, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स इनिशिएटिव है वो रहती है कि युवाओं को रोजगार, उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इन सब में उन्हें लगाया जाए। और हमारा हमेशा युवाओं से ये अनुरोध रहता है कि ये जितनी भी स्कीम्स इनिशिएटिव हैं उनमें वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं, दूसरे को लोगों को भी बताएं, ताकि उनका भी विकास हो, और ये जो विकास जो होगा उनका वो कंट्रीब्यूट करेगा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में।
1: बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देखिए आकांक्षाएं बढ़ी हैं
0: जी,
1: है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं की गई है। एक और श्रोता जुड़ गए हैं।
2: नमस्कार श्रीमान
1: जी। नमस्कार, अपना नाम बता दें।
2: मैं राम कुमार कल्याणपुर से बोल रहा हूँ।
1: राम कुमार शाह जी, क्या जिज्ञासा है?
2: जिज्ञासा बहुत हो रहा था सर, भारत विकसित भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, है ना, लेकिन वहाँ तक बढ़ने की तो चाह है भारत सरकार की, इसमें युवाओं का

0: दायित्व है, ये प्रमुख स्थान रखता है। ये जितने भी महापुरुष होते हैं, अरविंदो हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या जयप्रकाश हो, तो वो सब अपने युवा अवस्था में ही बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, अच्छे काम कर चुके हैं। और उसी प्रकार अभी वर्तमान में ही युवा है, वो विकसित भारत का लक्ष्य हमें लगता है तभी प्राप्त कर सकते हैं, अपने में मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज है, शिक्षा है, अनुशासन है, प्रेम है, सहानुभूति है, ये सब ऐसे मानवीय मूल्य है, इनको उन्हें अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो नई तकनीक है, उस नई तकनीक की जानकारी और उसके क्रियान्वयन कराए युवा में अपने मानव दायित्व बोध करा जा सकता है और करें, और इसी के बदौलत
1: जैसा राम कुमार जी बोल रहे कि ये जो टारगेट है हमारा 2047 तक का, इसको अचीव करने का तो शुरुआत तो हो चुकी है। ये 2022 में हमारा ये लक्ष्य रखा गया था, और आप जैसे देखिए आज कि हम लोग वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। एप्पल की जो मोबाइल फोन्स आती है उसके जो अलग डिवाइसेस होते हैं, 50-60% 40% इंडिया में बन रही है अलग से। उसके ऊपर से हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है जो सारे स्टेट्स में आ रही है, इसके भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज, उद्योग ये सब खुले गए हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रेंथन हो रही है। आप एग्रीकल्चर में ये आज देखिए, हमारे बिहार में ही नई नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, लोग ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फसल उपजा रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो इससे फार्मर्स की भी जो इनकम है वो बढ़ रही है।
2: ये बात तो सही है अमरेंद्र जी, कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हमने बहुत सारे मानक बनाए हैं। संभवतः 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि सिर्फ कुछ पढ़ाइयाँ कर लेनी मेडिकल की या इन सब चीज़ों की वही नहीं है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि फिल्म एनिमेशन का जो काम है वो दुनिया की जो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो 60-65% एनिमेशन का काम अपने देश भारत में हो रहा है। नई पीढ़ी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाई सिर्फ दो है, बीटेक कर लें या फिर मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें। आमतौर पर जो धारणा बनी हुई थी अपने देश में इंजीनियर और डॉक्टर की, इसके इतर बहुत सारी चीजें हुई हैं। और श्रोता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी अपना नाम बताएं।
3: मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
2: जी किशन कुमार मंडल जी बताइए।
3: सर युवा पीढ़ी सब गांव से बाहर के पढ़ाई लिखाई कर करके रोजगार नहीं मिलते, सब चला जाते हैं।
2: अच्छा पलायन की बात आप कर रहे हैं ना।
1: जी ऐसा है कि अब बिहार में डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, जो हमारे यूथ जो जा रहे हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, वो एक इशू है बहुत दिनों से, बहुत सालों से हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग अनस्किल्ड लेबरर हैं जो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी कोई ऐसा काम करते हैं जिनमें इनकम कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है। हमारी बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बहुत सारी पॉलिसीज आए हैं कि अब ये जो यूथ जो बिहार से जाएंगे इनको पहले ही कोई ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वहाँ अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ऐसे जॉब पा सकें जिनमें इनकम ज़्यादा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा हो। अब सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, हमारे बिहार से जो आईटी इंजीनियर जाते हैं, जो सिलिकॉन वैली बना रखे हैं, सारे इंजीनियर डॉक्टर एकदम स्किल्ड लेबर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमें उन्हीं से सीखना चाहिए कि बिहार में भी जो यूथ बाहर जाए वो अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी सर्टिफिकेशन डिग्री के साथ जाएं, ताकि वो अच्छी जॉब पा सके स्टेट। और एक चीज़ और मैं आपके मन से साझा करना चाहता हूँ अपने युवाओं से, कि हम अब के जो युवा हैं, जो जेन जी जिनको कहते हैं, चाहे जो अभी 20 से 30 साल के बीच में हैं, इन्हें अब आईटीआई में वेल्डिंग, कारपेंटरिंग ये सब तो मतलब हो ही रहे हैं और पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन अब हमारी सरकार चाह रही है कि एक नया चीज़ जैसे आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब भी युवाओं को सिखाया जा सके, ताकि वो अच्छी जॉब पा सकें। जैसे हम लोग बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब आईटी कैपिटल कहे जाते हैं, जहाँ पे अभी मोस्टली आईआईटी आईआईएम यहीं से इंजीनियर्स जा रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज, रूरल एरियाज हैं, यहाँ से भी हमारे यूथ ये सब सीख के जा सकें, ताकि उन्हें भी वो कम्पीट कर सके और वो वहाँ जॉब पा सके।
2: एक और श्रोता जुड़े। जी नमस्कार। जी
4: से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शोएब।
2: मोहम्मद शोएब क्या कहना चाहते हैं?

0: सवाल है सर, सवाल यह है कि मैं दिव्यांगजन हूँ 100% आई दिव्यांगजन के लिए कोई प्रोग्राम आप नहीं करते हैं, ओके जी है। दूसरी बात है कि युवा शक्ति बेचारे काम सीख लेते हैं लेकिन रोजगार है भी तो जानने वाले लोग उनके समर्थन नहीं करते हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, उनको बताते नहीं है। अच्छा। जो सरकारी फंड में जो चले गए हैं वो तो समझ रहे की बस मेरे पिताई यही तक है। तो ये उन लोगों को हेल्प करना चाहिए जो लोग बेचारे पिछड़े है,
1: मोहम्मद शोएब साहब आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये कि आप दिव्यांग हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपने फोन लगाया है। देखने की शक्ति आपके पास नहीं है लेकिन इतनी आत्मशक्ति आप हमसे जुड़ पाए हैं और उन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनके पास नेत्र ज्योति है लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से। और जो चिंता आपने कही है ना कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं लेकिन लोग नौकरी तक ही सीमित हैं और भी अवसर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, संभवतः यही आप कहना चाह रहे हैं शोएब साहब। अमरेंद्र जी बेहतर बताएंगे आपको। अमरेंद्र जी
2: नमस्कार। मोहम्मद शोएब जी, और आपका जो क्वेश्चन है रोजगार के बारे में और जो दिव्यांगजन है उनके स्कीम्स के बारे में, तो अब हमारे मोस्टली बिहार गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं चाहे दिव्यांगजन है उनके लिए रिजर्वेशन रहती है जॉब में, एम्प्लॉयमेंट्स में, जो आपको पता होगा। फिर हमारे एक है सुगम नीति है, सुगम एक स्कीम है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए मतलब उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और रोज़गार के बारे में जैसा आपने पूछा कि आप लोगों को स्कीम्स वगैरह की जानकारी नहीं होती है बहुत सारे लोगों की, कहना चाहता हूँ कि आप तो हम लोग डिजिटल युग में रहते हैं, हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म है जैसे माई गोव एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मेरा युवा भारत वो भी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कोई अगर आप लोन लेके कोई माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो, सारी जानकारी वहाँ रहती है। आप अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्यालय भी जाइए तो वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड वगैरह पे बहुत सारे इन सब जितने अपॉर्चुनिटीज हैं उनका अच्छे से जानकारी रहती है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब जानकारियों का पता कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आज आपके मन से बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी कॉल्स आए, जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जेंडर इक्वलिटी आए, इसमें लड़कियां भी, क्योंकि लड़कियां 50% पॉपुलेशन है युवा की, अगर वो पीछे रह गई तो फिर हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। हर साल जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है कम से कम 5 लड़कियां टॉप 10 में लड़कियां ही होती हैं।
1: सही बात।
2: तो लड़कियां सब जगह आगे बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये रिक्वेस्ट है कि सारी लड़कियां आगे आए, क्योंकि उनके बिना फिर हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का वो पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आएगी।
1: एक बात और, युवाओं में तनाव है
2: जी,
1: डिप्रेशन है
2: जी,
1: मनोविकार भी है, नशे की लत भी है
2: जी।
1: अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम भी किया और युवाओं से आह्वान किया कि
2: मेरा युवा भारत के थ्रू ही
1: और सबसे खराब घातक और तकलीफ देह बात कि जिस युवा पीढ़ी पर हम दृष्टि लगाए हुए हैं कि यही युवा पीढ़ी जो है वो हमें वहाँ तक पहुँचाएगी विकसित भारत के लक्ष्य तक, उनमें से कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए ये बहुत बड़ी गंभीर आपने एक टॉपिक उठाया है जिसमें सुसाइड हो गया, चाहे नशा एडिक्शन हो गया कुछ या बाकी चीज़ें जो आदतें हैं, उसके बारे में ये कहूँगा कि मैं खुद 3-4 साल पहले, मतलब मैं भी युवा ही हूँ और मैंने भी ये सब चीज़ें झेली है, लेकिन मेरा एक ही आप लोगों को मैसेज रहेगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमेशा आएंगी आपको, आप स्टूडेंट फेज में हो, अगर आप आगे जॉब में आए, आपकी फैमिली हो, चैलेंजेस आती ही रहती है, लेकिन इनका कैसे आप निवारण करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन लेते हैं, यही तो हमारी ऊर्जा का एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा। तो हम चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना है, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स से बातें करें और उनसे साझा करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनको सॉल्यूशन कैसे लें। एक ये भी है कि हमारा एक नशा मुक्ति अभियान अभी चल ही रहा है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे युवाओं से अनुरोध और आह्वान किया है कि नशे से दूर रहें और बाकी अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों को भी उससे दूर रखें।
1: 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, अंतर्राष्ट्रीय

0: युवा दिवस हमारी युवा पीढ़ी जो देश के विकास में लगी हुई है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: मेरा एक लास्ट संदेश रहेगा कि युवाओं में खुद में उन्हें आत्मविश्वास सबसे पहले होनी चाहिए कि वो जो भी लक्ष्य पूरा लक्ष्य देखें, जो भी सपने देखें, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, वो एक तो वो बहुत बड़े होनी चाहिए आकांक्षा, सपने बहुत बड़े रखें, आत्मविश्वास आप में रहनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए खूब सारी मेहनत करें। यही बस मैसेज है।
0: ये कहते हुए हम विदा लेंगे आज के कार्यक्रम से कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हम अगर सपना देखें तो ऐसा देखें वो सपना विकसित भारत का सपना पूरा करने जैसा सपना हो। तो श्रोताओं, आज की हेलो जिंदगी का विषय था विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व। बतौर विशेषज्ञ माई भारत दरभंगा जिला युवा अधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर जी, आपने अपना समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सारे युवाओं को और जितने भी श्रोता जुड़े।
0: तो मिलेंगे अगले रविवार दिन में 11 बजे हेलो जिंदगी में किसी और विषय किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक अमित कुमार के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

रविवार 9 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये

0: करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

कार्यक्रम विवरण। इसके तहत श्रोताओं, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। देशभक्ति गीत अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का आनंद लिया जा सकता है दिन में 1:15 से।

प्रादेशिक समाचार दिन के 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। रोजगार सूचना दिन के 2:10 पर और दोपहर समाचार प्रतिदिन आप सुना करते हैं 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। दिन के 2:30 आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का और अपराह्न 3:00 आज मंगलवार है हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ बज्जिका लोकगीत। तो ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर।

हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे कार्यक्रम युवावाणी के साथ। शाम 6:25 पर मैथिली संवाद।

शाम 6:30 बजे कार्यक्रम गाम घर और 6:55 पर आप सुनिएगा किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार। समय याद रखें 6:55 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार 8:15 पर हम आप तक पहुंचाएंगे और समाचार संध्या सुनिएगा 8:45 पर। रात 9:00 न्यूज एट 9 और उर्दू में खबरें 9:15 पर। कार्यक्रम विविधा आप सुन सकेंगे 9:30 पर। श्रोताओं 10:00 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। समय याद रखें 10:00।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं। अभी से हमारे साथ बने रहिए और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सलामी के इस गीत के साथ। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

सलामी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। लीजिए सुनिए अगला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में है। गीत रचना संतोष आनंद के हैं और संगीत अनु मल्लिक का। फिल्म का नाम है तहलका।

फिल्म देवदास में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को। आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं इस समय फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है संगीत फिल्म से। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार नरेश शर्मा। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल। तो लीजिए सुनिए, ये रहा अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

ये फिल्म थी धड़कन, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की थी। आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए सुनिए अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आखिरी पेशकश है फिल्म सूर्यवंशम से। आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की है।

सूर्यवंशम। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल स्पष्ट किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों से संबंधित मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन नारेबाजी के कारण इसे संचालित नहीं किया जा सका। हंगामे के बीच सभापति ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और जिला स्तर पर शिकायतों के निष्पादन से असंतुष्ट आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इसके तत्काल निपटारे के आदेश दिए। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को राजधानी पटना में किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकारी स्कूलों में उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। पत्र में श्री यादव ने कहा है कि इन शिक्षकों का अनुचित स्थानांतरण किया जा रहा है। उन्होंने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लंबित वेतन का अविलंब भुगतान तथा प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उनकी स्थापना सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज शहीद दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान आज ही के दिन प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुपौल जिले के मरोना प्रखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों में प्रभात फेरी निकाली गई। छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों ने देशभक्ति के नारे लगाकर आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 33.6 मिलीमीटर बारिश कैमूर के कुदरा में रिकॉर्ड की गई। विभाग ने आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी कि IGCAR कुल पदों की संख्या है 200, आवेदन 20/7/2026 से ही शुरू है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19/8/2026। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है इसके लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं SSC मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए और ITI

पास्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष जानकारी के लिए इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर देखा जा सकता है। एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, NFR रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026, कुल पदों की संख्या है 6,777। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से ही है और अंतिम तिथि इसके लिए है 19/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा है 24 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए NFR रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr-recruitment.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: स्टूडियो की घड़ी में 2:00 दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने

0: शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा

0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
1: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को

0: योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की

पूर्व नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। छह बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की नौवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आपको आकाशवाणी के स्टूडियो में। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 और 37 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। फिल्में थी बाजीगर, खुदगर्ज, राज और इतिहास। आवाजें अलका याग्निक, विनोद राठौर, मोहम्मद अजीज, साधना सरगम, उदित नारायण, काविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और ए हरिहरन की। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए अब सुनिए बज्जिका लोकगीत।

इस गीत के साथ ही बज्जिका लोक गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। जिन कलाकारों को अभी आप सुन रहे थे वो थे कृष्ण कुमार श्याम, जगन्नाथ राय और उमाशंकर शाही। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती है, तो वो ये सुनकर के बहुत उत्साहित होती है कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का

0: विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव है, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज कि हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था।
1: जी,
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला, जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके, वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोगों ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है, उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती हैं। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा, चढ़ रहा, उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज

0: आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे। बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं, पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे। अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गांव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है। और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं, अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं। वहां पर बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें, बर्तने, कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं और तरह तरह की, जैसे आपने चूड़ियां।
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देख आते हैं, दुर्गा पूजा देख आते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी। अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए, तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो
0: अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या

0: तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है, ये कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलाने से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका

0: उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
1: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया, और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जिवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया, और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
0: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो रिचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है, और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। रिचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हों, रूढ़िवादी परिवार से क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
1: जी,
0: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है, और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है, और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना,
1: बिल्कुल घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी

0: बात रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है। लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं नाचना आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। 2-3 दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो,
0: गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहां बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आए नहीं पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए, और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार
0: ऐसी नींद भी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी।

0: बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
1: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
0: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह, मतलब पता चला वो 3 बजे सो
1: अब
0: रहे हैं।
1: उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय कहा से हुजूर।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: गाना,
2: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चर की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
2: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे।

0: ही वॉन्टेड अ सिंगर, तो मैंने वहीं पे स्कोर किया.
1: क्या बात है.
0: की और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था. एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म.
1: यू हैव टू सिंग.
0: ओके. आमी लाशमोई তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ,
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस,
0: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो,
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह वाह वाह,
0: पर ये
1: तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm and life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye dheere dheere ye part of life ban gayi.
1: Bilkul bilkul, lekin ye jo
0: this is the beginning, yeah,
1: yes, bilkul, lekin iske baad international films aur unme awards lene aur tareef paane ka silsila lagatar chalta raha
0: ji,
1: to iske baad kaun si film aayi?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: महाराजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड, फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस
0: नहीं।
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ बिबौर। बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके, फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी था, हाँ,
0: प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के,

0: तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा। पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा।
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया।
0: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: क्या बात है,
0: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई।
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
0: सब
1: हाँ,
0: इंटरनेशनल फिल्म।
1: करेक्ट, करेक्ट।
0: या
1: जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ,
1: बुनी गई।
0: हाँ।
1: फिल्म।
0: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
0: बिल्कुल,
1: वो भी सुना जा सकता
0: है। वो भी, हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एनवाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला,
1: बट ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने, पार्च्ड,
0: मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए।
1: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली

0: स्टोरी दैट आई हैड रिटन
1: अरे वाह,
0: यस,
1: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
0: हाँ
1: वाह,
0: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोचे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं। मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का। एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो
1: एक

0: सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो.
1: वो एक शानदार फिल्म बनी.
0: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
1: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें.
0: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है,
1: इज
0: अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
1: हु
0: इज आवर प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए.
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया.
1: बड़ा हो गया और फिल्म बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है.
0: हाँ.
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची.
0: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड आल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
1: बिल्कुल सही है. जोरम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है.
0: हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
1: वाह,
0: ही इज अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ.
1: वाह,
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है. और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटूरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह.
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है.
1: बिल्कुल,
0: यू नो, इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है.
0: बिल्कुल.
1: और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: अनंत जी, अनंत जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और film के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई,
1: वो भी उनके साथ ही, उनके
0: साथ
1: जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया.
0: बिल्कुल,
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज. मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा.

0: जो वहां दिख रहा है.
1: वहां दिख रहा है एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो. इट्स
0: यस.
1: नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
0: क्या बात है. तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
1: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
0: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्में.
1: हाँ, उनके साथ तो मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस,
0: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी.
1: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
0: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
1: जी जी जी जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है. और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माई कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय, विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स वाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड. एनी वे, सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की, मतलब, कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो, एवरीथिंग वाज, सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
0: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला. yeah. उसका काफी नाम हुआ. yeah. उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं.
1: बिल्कुल.
0: कौन सा गाना होगा?
1: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे. मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है. उसका जो, मतलब, मेरा फेवरेट गाना बावरा मन.
0: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है.
1: हाँ.
0: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
1: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था.
0: तब से गाते. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट randomly gone to my gynecologist to do some checkups. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए?
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज, सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यू नो, एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की है, 9 साल

0: की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर. बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर. इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, देर इज नोबडी एल्स. So how would I do this? And the expenses of my treatment is obnoxiously high.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Initially, insurance also refused my claim.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ. And I had to fight and fight and fight with the insurance.
1: आप जीती?
0: Yes. But the thing is, there were too many battles. You know, इसमें मैं heal कैसे हूँ? Because it's also about healing, and I was coming, and the stress of the film.
1: वो तो रखा ही हुआ था.
0: तो it was just I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. That day I really hit the rock bottom. कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल.
0: But my sister told me कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा. You have to tell your friends. नहीं तो if not now then when? वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? That's when I reached out. मेरा एक girl gang है. मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है. दिस वाज आर गर्ल गैंग. ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली रिचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर. कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
1: गजब.
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: जबकि 1.5 साल बीत चुका है.
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग. और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके.
1: ये कितना मुश्किल था.
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था. और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट 1 पर्सन इज टेकन.

0: केयर ऑफ। मैंने बोला था मैं मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट। और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माय फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए,
0: ये शारे इस
1: पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी।
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूं उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूं क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप। और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को कहा अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और that was the last evening। मैं एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा। अपने ही सेल्स हैं which have gone rogue, it's up to me if I can heal। ये मतलब it just went back and forth like that, and that's the day मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर अराउंड द फैक्ट

5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवानी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत, और साथ ही साथ कुछ आपसे बातचीत भी होगी हमारी। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं बीभा झा के स्वर में ये देवी गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे चंद्रिका कुमारी के स्वर में ये लोकगीत। लेते हैं एक छोटे से अंतराल, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस संदेश के बाद पुनः आप सबों का स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। और अब सुनिए सुषमा कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अब सुनिए कुमकुम झा के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कल्याणी सिन्हा एवं सहेली के स्वर में ये लोकगीत। और इसी गीत के साथ आज के युवानी कार्यक्रम से दोस्तों दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:40 हो चुके हैं। अब वक्त हो चला है कुछ फिल्म्स, नए फिल्म संगीत सुनवाने का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं आज़ाद फिल्म का यह गीत।

अब सुनिए, दाग दी बर्निंग फायर का यह गीत गायक कलाकार हैं मनीष शर्मा, गीतकार हैं विमल कश्यप और संगीत निर्देशन ब्रजेश का है।

बिच्छू बन के हमें उग्रवादी जो बसने आए वो जान ले, भारतीय है हम उनकी हस्ती को देंगे हम मिटा। अपना नारा है देश प्यारा है जीने जिसे नहीं कोई सका।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए, फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत। गायक कलाकार हैं तान दीवान एवं राजा सिन्हा। संगीत निर्देशन शशि कुमार का है और बोल हैं दिलीप वर्मन के।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: अब सुनिए फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत, तान दीवान एवं राजा सिन्हा की आवाज में। बोल हैं दिलीप बर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार का है।

की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे सैम बहादुर फिल्म का यह गीत, सुनिधि चौहान की आवाज़ में। संगीत निर्देशन शंकर एहसन का था और बोल थे गुलजार के। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने ही वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की

0: प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का समय होगा संध्या

6:25 तथा खेती गृहस्थी आज आप सुनेंगे शाम गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर तथा किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:55 पर जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 7:50 पर तथा संसद समीक्षा का समय होगा 8:00 जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। विविधा कार्यक्रम 9:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 9:45 पर आप सुनेंगे इंग्लिश टॉक। 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 10:10 पर आप सुनेंगे एक फनकार कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम। सर्वेंट ऑफ इंडिया आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा आप सुनेंगे 6:55 पर, विषय होगा डेयरी उद्यमिता विकास योजना। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, आंख में चोट लगने पर क्या करें, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रतिदिन 6:10 पर। रामचरितमानस गान का प्रसारण आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम 7:05 पर। अंजुमन प्रोग्राम जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनाएंगे दिन में 9:05 से। 9:50 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, लोकगीत कार्यक्रम का समय होगा दिन में 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। दोपहर 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। नारी संसार कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत, कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक।

अभी आप सुन रहे थे राम कुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं गौतम मिश्र के स्वर में।

अभी आप गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यावती गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में है।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोकनिक शिकायत सभक सुनवाई कयलनि। एहि दरमियान ओ प्रखंड आ जिला स्तर पर शिकायत सभक निष्पादन सँ असंतुष्ट आवेदक सभक समस्या सुनलनि आ संबंधित अधिकारी सभ के एकर तत्काल समाधानक आदेश देलनि। राज्य स्तरीय सहयोग शिविरक आयोजन प्रत्येक मासक दोसर मंगल दिन कऽ राजधानी पटना में कयल जायत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी सभ सँ स्वतंत्रता दिवस के पूरा उत्साह आ गौरवक संग मनेबाक अपील कयलनि अछि। सोशल मीडिया पर साझा कयल गेल एक वीडियो संदेश में श्री मोदी कहलनि जे 15 अगस्त कऽ स्वतंत्रता सेनानी सभ के श्रद्धांजलि अर्पित करैत विकसित भारतक संकल्प के मजबूत करू। प्रधानमंत्री देशवासी सभ सँ स्वतंत्रता दिवसक अवसर पर अपन अपन घर पर तिरंगा फहरेबाक आह्वान कयलनि। राष्ट्रीय गीत

0: वंदे मातरम के सम्मान के आब कानूनी संरक्षण भेट गेल अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय सम्मानक अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के स्वीकृति दऽ देलनि अछि। संसदक दुनू सदन सँ पारित एहि विधेयक के कानून बनलाक बाद वंदे मातरम के राष्ट्रीय गानक समान वैधानिक संरक्षण भेटत। आई शहीद दिवस अछि। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दरमियान आजुक दिन प्रदेशक 7 विद्यार्थी सब अपन बलिदान दऽ कऽ पटना सचिवालय पर तिरंगा फहरौने छलाह। एहि 7 शहीद सब के स्मरण में बिहार में शहीद दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोहक आयोजन कयल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधान परिषदक सभापति अवधेश नारायण सिंह आ विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव सहित आन गणमान्य लोक सब शहीद सब के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। ओतहि शहीद खुदीराम बोस के शहादतक स्मरण में आई मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शिक्षक सभक स्थानांतरण प्रक्रिया के लऽ कऽ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पत्र लिखलनि अछि। ओ उर्दू, अरबी आ फारसी विषयक शिक्षक सभक संग कथित भेदभावपूर्ण आ नियम विरूद्ध व्यवहारक आरोप लगबैत स्थानांतरण सूचीक स्वतंत्र आ निष्पक्ष समीक्षाक मांग कयलनि अछि। ओ अनुदानित मदरसा आ संस्कृत विद्यालय सभक शिक्षक कर्मचारी सभक बकाया वेतनक तत्काल भुगतान करबाक सेहो मुख्यमंत्री सँ मांग कयलनि अछि। E20 पेट्रोल पर सरकार अपन स्थिति स्पष्ट कऽ देलक अछि। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी सोमदिन राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनौलनि जे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के वैज्ञानिक तरीका सँ चरणबद्ध आ सुनियोजित ढंग सँ लागू कयल गेल अछि। मंत्रीक अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण आ फील्ड ट्रायल में तय मानक सभक आधार पर E20 पेट्रोल पूरा तरह सुरक्षित पाओल गेल अछि। पुरान गाड़ी सभ मे सेहो एकर प्रयोग सँ गाड़ीक प्रदर्शन पर कोनो बेसी असर देखबा मे नहि आयल अछि। केंद्र सरकार जनौलक जे फरवरी 2024 में शुरू भेल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सँ एखन धरि 5 लाख सँ बेसी परिवार के लाभ भेटल अछि। आइ लोकसभा में एक प्रश्नक लिखित उत्तर में नवीन आ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जनौलनि जे एहि योजनाक अंतर्गत एखन धरि देशभर में केंद्रीय वित्तीय सहायताक रूप में 28,000 करोड़ टाका सँ बेसी के सब्सिडी जारी कयल गेल अछि। सुपौल जिलाक मरौना प्रखंड में हर घर तिरंगा अभियानक अंतर्गत कतेको स्कूल सभ में प्रभात फेरी निकालल गेल। छात्र छात्रा सभक संगहि शिक्षक लोकनि देशभक्ति के नारा लगाकर आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेलनि। मधुबनीक रामपट्टी स्थित मंडल कारा में बंद एक कैदीक आई इलाजक दरमियान सदर अस्पताल में मृत्यु भऽ गेल। आक्रोशित परिजन सभ अस्पताल में हंगामा कयलनि। अररियाक उत्पाद अदालत नशायुक्त पदार्थ सभक तस्करीक मामिला में दोषी मोहम्मद फारूक के 10 वर्षक कारावास आ 1 लाख टाकाक अर्थदंडक सजाए सुनौलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: एखनो सब संगीता प्रसर के स्वर में ये गीत सुने चलो हूँ।

0: आ सुतर लोकन ग्रामीण समाज में युवा के बड़ समस्या है क्या तो जे शिक्षा प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान चाहिए वो गाम में उपलब्ध नहीं भ पाबी आ अहिलेल उनका छे से नगर और महानगर के दिशा में रुख करो पड़े छन। तो ग्रामीण समाज में युवा के समस्या और ओकर समाधान कोना हुआ एहि विषय पर हम सब आजुक दिन एकटा परिचर्चा सुनब। प्रतिभागी लोकन छे दीप शिखा बारीक, आर्या झा, आनंद मिश्रा, सुदीक्षा प्रिया, विदिशा रंजन आ संचालक छथि गोपी चंद्र झा आ प्रस्तुति अछि असद दौद के। तो सुनी हम सब बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित ई परिचर्चा।
1: ग्रामीण समाज में युवा शक्ति, ऊर्जा और नव विचार का स्रोत होते जे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल समावेशन और सतत विकास जेहन मुद्दा पर जागरूकता बढ़ाकर सामाजिक बदलाव का अभियान जना दहेज विरोधी में सक्रिय भकर नेतृत्व गुण विकसित कर और सामुदायिक गतिविधि में भाग लकर काम के सतत आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाबे में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी विकास होते और पीढ़ीगत अंतर कम होते। तो आजुक जो हम सब चर्चा करब वो चर्चा के विषय है ग्रामीण समाज में युवा का समस्या और ओकर समाधान। तो हमरा लोग किस अहाँ के युवा उपस्थित छे अपन अपन नाम अहाँ सब बाजे जाइयो।
2: आर्या झा, दीक्षा प्रिया, दीक्षा बारे, विदिशा रंजन
1: और
3: प्रणाम।
1: अच्छा आनंद मिश्रा। अच्छा तो दीपशिखा बारीक अहाँ ये बताबू कि ग्रामीण समाज में युवा का की समस्या छे, कौन कौन समस्या का सामना ग्रामीण समाज में युवा का करो पड़ी छे।
2: युवा समाज जे छे से कोनो देश के विकासशील प्रगतिशील होवे के दर्पण छे। भारत जका देश जहन 68% युवा ग्राम घर में रहे छे तथा अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या सब होय छे, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव, प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्था तो छे लेकिन मुद्दा छी उच्च शिक्षा के। उच्च शिक्षा में अभी तक सुधार करबैक बाकी छे। दूसर समस्या छे बेरोजगारी और कृषि अरुचि।
1: अच्छा।
2: पारंपरिक कृषि जे छे अब लाभदायक न रहले।
1: अच्छा।
2: यही कारण युवा सब के कृषि से मन भर गेल।
1: कृषि क्षेत्र में तो नव नव अनुसंधान भ रहल अछि, नवाचार भ रहल यऽ। तो अनुसंधान और नवाचार का आधुनिक तकनीक का लाभ युवा लोग उठाते छे।
2: युवा लोग जीएमओ सीड, जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जे बीज सब जेनेटिकली मॉडिफाइड करे जाय छे से सबके लाभ उठा सके छे लेकिन जागरूकता उतने न छेले।
1: अच्छा अच्छा, जागरूकता का अभाव है छे।
2: जी, जागरूकता के अभाव छे जेहि कारण युवा सब पलायन करे छे।
1: अच्छा अच्छा,
2: बेरोजगारी के कारण गांव घर से सब युवा शहर की ओर भागे छे।
1: अच्छा अच्छा, अहां का कहियो। हां हां,
2: गांव घर में अब खाली बच्चा और बुजुर्ग रह गेले काहे कि सब युवा सब शहर की ओर पलायन कर गेले।
1: अच्छा,
2: और एगो बड़ समस्या छे डिजिटल डिवाइड।
1: अच्छा।
2: बिजली और इंटरनेट ग्राम घर तक पहुंच गेले लेकिन ओकर रचनात्मक उपयोग अभी तक जागरूकता न छले। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन छले, ऑनलाइन लर्निंग छले, गांव घर सब में अभी तक युवा इस बहुत बड़ नीक चीज का अभी तक इस्तेमाल न कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: क्योंकि सामाजिक कुरीति सब भी युवा सबके आगे बढ़ने से रोके छे।
1: अच्छा अच्छा, आहा बताबू। हाँ, आहा बताबू कि एकर समाधान की छे।
2: समाधान छे स्थानीय स्तर पे कौशल विकास। स्थानीय स्तर पे कौशल विकास जे स्किल डेवलपमेंट सब करना जरूरी छे। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना जरूरी छे। खेल और सांस्कृतिक गतिविधि के बढ़ावा देना युवा सबके निज संस्कृति के मालूम है वह अत्यंत जरूरी छे। ग्रामीण सुधार में अत्यंत जरूरी महत्वपूर्ण चीज छे सामाजिक जागरूकता और समाज के साथ साथ

0: आगे बढ़ के एक इच्छा समाज जे आगे बढ़े छे। गांव सब घर में गांव सब घर सबके जागरूक होबा अत्यंत जरूरी छे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत उचित गप कहलो वहाँ कि सजगता जागरूकता और साकांक्ष भेन है तकने नव तकनीक के उपयोग अहाँ कह सके छे। आन जे प्रतिभागी छे अहाँ का अनसरा अहाँ ई बताबियो कि ग्रामीण युवा के की समस्या छे आ अहाँ के दृष्टि में एकर समाधान की छे। हाँ कहियो
2: युवा के सबसे बड़ा समस्या है रोजगार अभाव का पलायन। जी जी, अभी ग्रामीण इलाका में कारखाना और कंपनी सब भारी मात्रा में नहीं ओकर बहुत कमी है।
1: अच्छा,
2: जय लागी युवा के पास खेती के अलावा कोई दूसर उपाय नहीं।
1: अच्छा अच्छा,
2: दूसर समस्या है खेती, एकमात्र चारा होने के बाद भी खेती में कोई भारी आमदनी नहीं है। जैसा की पारंपरिक तौर पे खेती हुई है और बहुत साइंटिफिक तरीका से खेती करे के गांव के लोग के पास कोई उपाय नहीं है, हालांकि जागरूकता की कमी है। तेसर समस्या इनमें सबसे बड़ा है पलायन।
1: पलायन
2: पलायन सबसे बड़ा कहला की अपन घर में अगर खेती में पैसा नहीं है तो लोग बाहर जाये कमाए अपन घर परिवार के खर्चा उठा ले। अपन घर छोड़कर मुंबई दिल्ली जेहन जेहन बड़का बड़का शहर में मजदूर बनकर जाये।
1: अच्छा अच्छा, अहाँ के दृष्टि में पलायन कोना रुक, ग्रामीण युवा का पलायन कोना रुकते छे, की करबाक चाहिए गाम में की युवा पलायन नहीं करे?
2: पलायन रुके के तीन बहुत बड़ा समाधान है। एक तो ही पढ़ाई, अगर युवा में शिक्षा है तो युवा मजदूर बनकर पलायन नहीं करते।
1: अच्छा अच्छा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
2: सबसे बड़ा है कंपनी ग्रामीण इलाका में नीक नीक कारखाना कंपनी के उपलब्धता। अगर बड़ा बड़ा कंपनी गांव गांव में अपन कारखाना लगाते चाहे वो एग्रो बेस हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बेस हो।
1: अच्छा अच्छा,
2: वैसे गांव के युवा के बहुत बड़ा मदद मिलते पलायन को बाहर नहीं देते।
1: अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत नीक जानकारी दिलो। अब यहाँ का आन प्रतिभागी आर्या झा, तो आर्या झा अहाँ बताबियो कि ग्रामीण युवा के कौन कौन समस्या अच्छा एकर समाधान केना भ। आर्या झा,
3: मुख्य समस्या ग्रामीण युवा के मुख्य समस्या भ गेल जेना की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कमी, बेरोजगारी, कौशल विकास अवसर के अभाव और डिजिटल सुविधा के सीमित पहुँच और ग्रामीण लोगों के उचित मार्गदर्शनों नहीं भेज पावे। सुधारा ले हम लोग के गांव में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, कौशल आधारित प्रशिक्षण कर चाहिए, जानकारी देवा चाहिए युवा के, स्टार्टअप प्लान करो के चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, आन प्रतिभागी क्षेत्र अहाँ का शिक्षा प्रिया, शिक्षा जी अहाँ बताबू की ग्रामीण युवा के की समस्या है, अहाँ के दृष्टि में एकर समाधान कोना भ सके छे?
3: ग्रामीण भारत में युवाओं को उच्च शिक्षा की कमी और रोजगार के सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक रूढ़ियों के कारण आज भी लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है।
1: अच्छा अच्छा,
3: लोग अक्सर अच्छी शिक्षा के कारण लोग शहर जाते हैं जहाँ पर महंगी फीस के कारण उनका खर्च उठा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: अच्छा,
3: और लोगों की अक्सर यह सोच रहती है कि शिक्षा केवल लड़कों के लिए है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा सबके लिए बराबर है। अक्सर सामाजिक सोच के कारण बेटियां सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती हैं और उनका विकास नहीं हो पाता। आजकल लोगों को आजीविका का मतलब सिर्फ नौकरी समझ आती है, ये बिल्कुल गलत है। युवाओं को खेल कूद, चित्रकला और आदि में भी प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।
1: बहुत उचित गप कहले
3: हैं। अगर इसके समाधानों के बारे में हम बात करें तो सही दिशा और प्रयासों से इनका समाधान निकाला जा सकता है।
1: अच्छा,
3: हमें पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी और अन्य शिक्षण सामग्री को कम दामों पर उपलब्ध कराना चाहिए।
1: अच्छा,
3: और हर छात्रों में डिजिटल उपकरणों को पहुंचाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है और साथ साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और अन्य योजनाओं के जरिए कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: अच्छा, चलो बहुत उचित जानकारी दिलो। वास्तव में बेटी

0: ताओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, अभियान का माध्यम से अहाँ का नारी शक्ति का सशक्त कल जा सके और शिक्षा दौ का नारी शक्ति का आगे बढ़ावे में बहुत अहाँ का काज है। अच्छा आन प्रतिभागी विदिशा रंजन, तो विदिशा रंजन अहाँ बताबू कि ग्रामीण समाज में युवा के की समस्या छे और एकर समाधान की छे?
1: ग्रामीण भारत का युवा आज गंभीर समस्या से जूझ रहा है। उनमें से सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की कमी, क्योंकि खेतों में पर्याप्त आमदनी नहीं होती और कमाई ऐसी नहीं होती जो कि काम दिला सके, इसी कारण युवा शहरों की ओर पलायन करता है। दूसरी समस्या है शिक्षा और कौशल की कमी। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलते, जिससे कि युवा प्रतियोगिता में पीछे पड़ जाता है। तीसरी समस्या है नशा और दिशाहीनता,
0: अच्छा,
1: जो बेरोजगारी और निराशा के कारण बढ़ रही है।
0: अच्छा,
1: अब समाधान केवल खोखले नारे से नहीं होगा। इसका पहला सबसे पहला समाधान यही कि हमें कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और खेती के आधुनिक तरीके, छोटे उद्योग और स्वरोजगार शिक्षण देना भी जरूरी है।
0: अच्छा,
1: साथ ही गांव में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे और अंत में युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। जब युवा जागरूक और आत्मनिर्भर बनेगा तभी ग्रामीण भारत और देश दोनों आगे बढ़ेंगे।
0: बहुत उचित तरह जानकारी दिल। वास्तव में जखन युवा जागरूक है, साकांक्ष है और तखने से वो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकिए और तखने से आगू बढ़ सकिए। तो अहाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ सब बहुत उपयोगी जानकारी दिल। आकाशवाणी दरभंगा के दिस से अहाँ का कुटिश धन्यवाद, नमस्कार।
2: एखन हम सब बाद ध्वनांकन पर आधारित एक परिचर्चा सुने चलू हूँ। विषय छल ग्रामीण समाज में युवा की समस्या और उसका समाधान। प्रतिभागी लोकन छले थे दीप शिखा बारीक, आर्या झा, आनंद मिश्रा, सिदीक्षा मिर्या प्रिया और विदिशा रंजन। संचालक छले थे गोपी चंद्र झा आ प्रस्तुति छल असद दौद कर। आ श्रोता लोकन से ग्रामीण भारत के साक्षर बनाबे में वास्तव में युवा लोकन अपन उत्साह, नवाचार और ज्ञानक माध्यम से ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदल सके छथि। आवश्यकता है कि छे से एकरा लेल अहाँ का एक नीक योजना बनाएल जाए आ नीक योजना के उचित ढंग से क्रियान्वित कैल जाए। आ ग्रामीण भारत में साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अही के संगे गाम घर के जे समय है वो संपन्न हेबाक। गोपी भाई का आज्ञा दिया, नमस्कार।

अभी आप गामघर कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, हाई का ले आई इतनी बोरियों में?
4: खाद है सरजू भाई, यूरिया डीएपी पोटास यही सब, हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस, घाटे का सौदा है खेती।
3: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो, मेरी मानो मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
4: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
3: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
4: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
3: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है, अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो बस।
4: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं,
3: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
5: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं संजय किशोर
6: और मैं सोमा चक्रवर्ती।
5: तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज के इस अंक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।
6: आज की सामयिक चर्चा में हम बात करेंगे कि बरसात में सब्जियों के खेत की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए,
5: साथ ही किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी हम बात करेंगे।
6: साथ ही खेती किसानी की चर्चा के बीच कुछ पल सुरों के नाम करेंगे, सुनवाएंगे आपको लोकगीत।
5: किसानवाणी कार्यक्रम में ही खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देंगे वार्ता के जरिए। विषय होगा स्वच्छ दूध उत्पादन
6: और विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सोनिया कुमारी। हमेशा की तरह आपके लिए कुछ विशेष सुझाव के साथ साथ मौसम की जानकारी भी आपको देंगे।
5: तो ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी और अब कुछ विशेष बातचीत करते हैं।
6: संजय जी, बरसात का मौसम किसानों के लिए खुशियाँ और चुनौतियाँ दोनों को साथ लेकर आता है। बारिश जहाँ खेतों में हरियाली और फसलों के लिए जीवनदायिनी जल लेकर आती है, वही अत्यधिक नमी और जल जमाव सब्जियों की फसल के लिए कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकता है।
5: ठीक कहा आपने, ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई बहन बरसात के मौसम में अपनी सब्जियों की फसल की विशेष देखभाल करें ताकि फसल स्वस्थ रहे, रोगों से बची रहे और उत्पादन भी बेहतर हो।
6: हाँ, और इसलिए इस मौसम में खेत की विशेष देखभाल आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खेत में पानी जमा ना होने दें और आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। लगातार पानी भरे रहने से पौधों की जड़ें कमजोर हो सकती है।
5: बहुत सही कहा आपने सोमा जी, बरसात के मौसम में खेत की नियमित निगरानी करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्तियों पर विशेष

0: रूप से पीलापन छा जाता है, पत्तियों का सड़ना, दाग धब्बे आ जाते हैं, कीटों का प्रकोप दिखाई देता है, तो ऐसे में कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही संजय जी, खरपतवार भी बारिश में तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को साफ रखना चाहिए।
0: बहुत सही। और सब्जियों में संतुलित पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से मिट्टी की जो है गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
1: बरसात में लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों में कीट एवं रोगों की समस्या बढ़ सकती है, इसके लिए एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना बेहतर है।
0: बहुत जरूरी है ये। और इसी के साथ सब्जियों की समय पर तुड़ाई भी कर लेनी चाहिए। तैयार सब्जियों को खेत में अधिक समय तक न छोड़ें, इससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। क्यों?
1: बिल्कुल। तो किसान भाई बहनों, आपने जाना कि बरसात के मौसम में सब्जियों की फसल को स्वस्थ रखने के लिए जल निकासी, कीट एवं रोग प्रबंधन और समय पर फसल की देखभाल कितनी जरूरी है।
0: तो निश्चित रूप से सजग किसान ही मौसम की चुनौतियों को अवसर में बदलकर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: और खेती की बात हो तो किसान की आर्थिक मजबूती भी जरूरी है, क्योंकि एक समृद्ध और सशक्त किसान ही समृद्ध कृषि और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रखता है।
0: बहुत सही कहा सोमा जी आपने। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
1: अच्छा, मैं समझ गई कि आप हमारे किसान भाई बहनों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताना चाहते हैं।
0: जी जी।
1: तो ये योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है और फरवरी 2019 में औपचारिक रूप से इसे शुरू किया गया था।
0: और इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि एक साथ नहीं बल्कि 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर सीधे किसान के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है।
1: संजय जी, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को खेती के दौरान होने वाले खर्च के लिए एक निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
0: बहुत सही बताया आपने। और किसानों की आय संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करना भी इसका उद्देश्य है। बीज, खाद या अन्य कृषि उपकरणों या यंत्रों की खरीद में सहयोग करना भी इसका उद्देश्य है। और इसीलिए किसानों को खेती के छोटे मोटे खर्चों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।
1: बिल्कुल सही। और कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
0: और साथ ही योजना का लाभ वैसे भूमिधारक किसान परिवार प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध है।
1: जुलाई 2026 से इस योजना का विस्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान को आगे जारी रखने के लिए लगभग ₹3.16 लाख करोड़ के प्रावधान की मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है।
0: तो सोमा जी, हम कह सकते हैं कि सशक्त किसान ही सशक्त कृषि और समृद्ध भारत की नींव है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अब आगे और क्या?
1: देखिए संजय जी, खेती किसानी की बातें तो हम कर ही रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर सावन की फुहार में लोक संगीत की मिठास जुड़ जाए तो किसान वाणी का जो रंग है और भी सुहाना हो जाएगा। क्या ख्याल है?
0: तो लोकगीत सुनवाने की बात कर रहे हैं, सुनवाइए।
1: बिल्कुल। तो सावन का महीना है तो एक कजरी गीत हम लोग सुनते हैं। कलाकार हैं अवधेश कुमार।

0: वाह, लोक धुनों से सजा बहुत ही सुंदर लोकगीत हम सभी ने सुना। और अब हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा एक बहुत ही बहुउपयोगी जानकारी वार्ता के जरिए सुनवाना चाहते हैं।
1: वार्ता का विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सोनिया कुमारी।
2: दूध को भारतीय आहार परंपरा में संपूर्ण एवं पोषक आहार का दर्जा प्राप्त है। शिशुओं से लेकर वृद्धों तक दूध हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दूध में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, विटामिन एवं खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। किंतु यही पोषक तत्व दूध को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के

0: लिए अत्यंत उपयुक्त माध्यम भी बना देते हैं। यदि दूध का उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण स्वच्छ तरीके से न किया जाए तो यही दूध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के बजाय रोगों का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में स्वच्छ दूध उत्पादन की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका केंद्रीय स्थान रखती है। दूध में सूक्ष्म जीवी दही, पनीर जैसे उत्पाद बनाने में मदद करते हैं, स्वाद और बनावट देते हैं और प्रोबायोटिक्स के रूप में स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव दूध को खराब कर सकते हैं और बीमारियां भी फैला सकते हैं, इसलिए पाश्चुरीकरण करना जरूरी है, जिससे सुरक्षित और स्वादिष्ट डेयरी उत्पाद बनते हैं। किण्वन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद लैक्टोज दूध की चीनी को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही और छाछ बनाता है। यह प्रक्रिया पनीर, दही और अन्य किण्वित उत्पादनों के स्वाद और बनावट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग सूक्ष्म जीव, ईस्ट, बैक्टीरिया दूध के घटकों को तोड़कर विभिन्न प्रकार के स्वाद, सुगंध और बनावट विकसित करते हैं, जो विभिन्न डेयरी उत्पादों की विशेषता है। कुछ सूक्ष्म जीवी जैसे रोगजनक बैक्टीरिया दूध को दूषित कर सकते हैं और ब्रुसोलोसिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। पाश्चुरीकरण दूध को गर्म करना इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है, जिससे दूध पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीव दूध के पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं और प्रोबायोटिक प्रभाव के माध्यम से आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। प्रोबायोटिक वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे आंत में नेचुरल रूप में या स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। कई प्रोबायोटिक हमारे दूध के उत्पाद जैसे दही, पनीर इत्यादि में पाए जाते हैं, जो कि दूध को किण्वित करके उन्हें ज़्यादा डाइजेस्टिव और पाचन युक्त बनाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पशु के धन, मशीनरी, हवा, पानी और मिट्टी जैसे बाहरी स्रोतों से दूध में प्रवेश करते हैं। दूध में सूक्ष्म जीवी एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं, जैसे जो लाभकारी होते हैं जैसे किण्वन वाले मूल्यवान उत्पाद बनाते हैं, जबकि गलत रोगजनक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिससे कि दूध उत्पादन और प्रसंस्करण में स्वच्छता और पाश्चुरीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूध के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग करने पर दूध से अनेक किण्वित दूध उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे दही, छाछ, पनीर एवं चीज। ये सूक्ष्म जीव दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, दूध के स्वाद, बनावट एवं पाचन क्षमता को बेहतर बनाते हैं, मानव आंतों के स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूध को जल्दी खराब कर देते हैं। ये दूध में खट्टापन, दुर्गंध, जमाव, रंग परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अतः स्वच्छ दूध उत्पादन का मुख्य उद्देश्य इन रोगजनक सूक्ष्म जीवों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाना होता है।
1: तो संजय जी, बहुत ही उपयोगी वार्ता हमारे किसान भाई बहनों के लिए हम लोगों ने सुनाया और इससे हमें भी काफी कुछ जानने और सीखने को मिला।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो खेती बाड़ी के साथ साथ किसान भाई बहनों का जो स्वास्थ्य है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: और बरसात का भी मौसम है और खेतों और उसके आसपास जो है जल जमाव के कारण मच्छर और कई तरह के संक्रमण बढ़ सकते हैं।
2: इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छ और सुरक्षित पानी का प्रयोग करें और गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक न रहें।
1: बिल्कुल। और खेतों में काम करते समय पैर में जूते या जो गम बूट है जरूर पहने, पैर ढके होने चाहिए, ऐसे जूतों का प्रयोग करें ताकि जो कीड़े मकोड़े और जहरीले जीव है उससे बचाव हो सके।
2: साथ ही साथ अपने पशुधन का भी ख्याल रखें। पशुओं को सूखी और साफ जगह पर रखें, समय समय पर टीकाकरण तथा पशु चिकित्सक की सलाह

0: लेते रहें।
1: याद रखिए, खेत की फसल रहे स्वस्थ
0: तो किसान रहे खुशहाल। तो इतनी सारी वार्ता और इतनी सारी जानकारी के बाद कुछ और भी जानकारी है सुमा जी आपके पास?
2: जी हाँ, किसान भाई जो हैं, अभी तो बारिश का मौसम है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की, तो बारिश की जो संभावना को देखते हुए जरूरी है कि हम अपने किसान भाइयों को मौसम की जानकारी भी दे दें कि आगे क्या होने वाला है। तो इसके लिए बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में अनावश्यक सिंचाई बिल्कुल ना करें। जिन खेतों में जल जमाव है वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज हवा और गरज चमक के समय खेत में काम करने से बचें।
0: हाँ किसान भाई, लगातार नमी रहने पर सब्जियों और खरीफ फसलों में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है।
2: धान एवं अन्य खरीफ फसलों में पानी की स्थिति पर जरूर नजर रखें। अत्यधिक पानी जमा होने पर अतिरिक्त पानी की निकासी करें
0: और बारिश के बीच उर्वरक या किसी भी कृषि रसायन का छिड़काव न करें, इससे उसका प्रभाव कम हो जाता है।
2: सब्जी उत्पादक किसान बेल वाली या अन्य सब्जियों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखे।
0: हाँ, और इसके साथ ही किसान भाइयों कुछ सुझाव भी है आपके लिए बागवानी से संबंधित। तो आम के पौधों के बारे में आज हम कुछ जानकारी आपको सुझाव के तौर पर देना चाहेंगे। आम के पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है अभी। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर कीजिए। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखिए। फलदार वृक्षों में प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए। और अब केले के फसल के बारे में कुछ सुझाव। केला वर्तमान समय में स्वस्थ सर्कस की रोपाई करें। लंबी किस्में जैसे अल्पान, कांथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बौनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन कीजिए और लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर तथा बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद डालिए, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन मिलाइए। रोपाई से पहले सर्कस को कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी है।
2: और अब कुछ सुझाव हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। पशुओं में PPR, FMD, खुरपका, मुहपका एवं HS गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है, अतः पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से बिल्कुल अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में ही टीके अगर आपने नहीं लगवाई है तो इस माह में अवश्य लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे।
0: और अब किसान भाइयों, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री यानी 95 से 96 फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस यानी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। मौसम में बादल छाए रहने की संभावना है। देर से बारिश या बौछार की भी संभावना है। वर्षा की संभावना लगभग 56% बताई जा रही है।
2: तो ये थी मौसम संबंधी जानकारी।
0: तो किसान भाइयों, इतनी जानकारी के बाद हम चाहेंगे कि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो या कोई विचार आ रहे हो तो हमें अपने इस पते पर जरूर अपना फीडबैक दें। तो हमारे फीडबैक का पता है airpatna@gmail.com। और अब इसी के साथ
2: हमारा आज का ये किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न होता है।
0: मुझे यानी संजय किशोर
2: और मुझे सोमा चक्रवर्ती को
0: आज्ञा दीजिए,
2: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।
3: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का?

0: क्या बेचने भाई, क्या ले आए इतनी बोरियों में?
1: खाद है सरजू भाई, यूरिया डीएपी पोटास यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस। घाटे का सौदा है खेती।
0: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
1: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
0: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
1: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
0: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
1: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
0: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: कृपया ध्यान दें डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें डेंगू का मच्छर दिन में काटता है इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा जीवंत बिहार सपना हो साकार अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया आप भी लगवा लो
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर सूर्य घर
0: नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो

0: प्रयुगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मिला कानूनी संरक्षण। गायन में बाधा डालना अब होगा दंडनीय अपराध। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित। 20% से अधिक एथेनॉल मिलाने का नहीं हुआ है फैसला। और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में बांका और नवादा जिले में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर साझा एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

0: स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुपौल के मरौना प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने प्रभात फेरी निकाली। औरंगाबाद, शेखपुरा, कैमूर और अररिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में अधिकारी कर्मी, स्कूली बच्चे, जीविका दीदियां और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। बिहार शरीफ में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। रोहतास के सासाराम में स्वास्थ्य विभाग ने तिरंगा यात्रा निकाली। सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार के नेतृत्व में सामूहिक वंदे मातरम का गायन हुआ। वहीं मधुबनी में एसएसबी की ओर से हर घर तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को अब कानूनी संरक्षण मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक के कानून बनने के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण मिलेगा। कानून के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या इसमें बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित हुई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल स्पष्ट किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों से संबंधित मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने संबंधी केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक में विभिन्न राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का प्रावधान है। लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। E20 पेट्रोल पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वाहन निर्माता कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ने मिलकर काम किया है। मंत्री ने बताया कि प्रयोगशाला परीक्षण और फील्ड ट्रायल में तय मानकों के आधार पर E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। पुराने वाहनों में भी इसके इस्तेमाल से वाहन के प्रदर्शन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। श्री गोपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। श्री गोपी ने यह भी बताया कि डीजल में इथेनॉल मिलाने का परीक्षण निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर सका। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और वाहन निर्माताओं के सहयोग से डीजल में इथेनॉल मिश्रण की वैज्ञानिक जांच और परीक्षण किए, लेकिन अपेक्षित मानकों पर सफलता नहीं मिलने के चलते डीजल में इथेनॉल मिश्रण का प्रयोग फिलहाल संभव नहीं है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.जीओ

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और जिला स्तर पर शिकायतों के निष्पादन से असंतुष्ट 181 आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इसके तत्काल निपटारे के आदेश दिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों के साथ कथित भेदभावपूर्ण और नियम विरुद्ध व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण सूची की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। श्री यादव ने एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित कर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रोकने, नियम विरुद्ध तबादले रद्द करने और उर्दू, अरबी, फारसी के स्वीकृत पद समाप्त नहीं करने की भी मांग की। उन्होंने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने की भी मुख्यमंत्री से मांग की है। भाजपा ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल छात्र आंदोलन को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने पर भी विपक्ष की आलोचना की। आज शहीद दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान आज ही के दिन प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है।
1: ग्यारह अगस्त 1942 का दिन पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए कुछ छात्र सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। मंजिल थी सचिवालय पर तिरंगा फहराना। कदम आगे बढ़े, गोलियां चली और तिरंगे को थामे 7 वीर छात्र शहीद हो गए। इन शहीदों में उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार और राम गोविंद सिंह शामिल थे। आज भी पटना का शहीद स्मारक उन अमर युवाओं की कहानी कहता है जिनके लिए तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि आजादी का सपना था। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: शहीद दिवस के अवसर पर पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अमर शहीद उमाकांत सिंह के त्रिकोण सिवान जिले के जीरादेही प्रखंड के नरेंद्रपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। औरंगाबाद में शहीद जगतपति कुमार को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इधर शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने

बांका में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के चार ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी पटना, वैशाली और बांका में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के साथ साथ निवेश के कई कागजात बरामद किए गए। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। बांका जिले में 5 जबकि नवादा में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बांका के सुहिया और बौसे प्रखंड में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 7 अन्य घायल हो गए। दूसरी तरफ नवादा जिले के दरियापुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। ये सभी खेत में काम कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 33.6 मिलीमीटर बारिश कैमूर के कुदरा में रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने आज विरोध मार्च निकाला। मधुबनी के रामपुर स्थित मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अररिया की उत्पाद अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी मोहम्मद फारूक को 10 साल कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मिला कानूनी संरक्षण। गायन में बाधा डालना अब होगा दंडनीय अपराध। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित। 20% से अधिक इथेनॉल मिलाने का नहीं हुआ है फैसला। और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में बांका और नवादा जिले में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर।

0: चौधरी।
1: सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर सुपौल जिले के सुखपुर के बाबा त्रिहेश्वरनाथ महादेव और गणपतगंज के बाबा भीम शंकर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए दोनों मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में SDRF की तैनाती भी की गई है। जिले में लगातार हो रही बारिश और कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। अभियंताओं की टीम लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन या जिला नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की है।
2: बेलागोट, पचगछिया और कई जगह ढोली पंचायत में कटाव हो रहा है, उसी व्यक्ति का हम लोग भ्रमण किए थे और भ्रमण करने के पश्चात सभी गांव का चिन्हितकरण किया गया। साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार जिनके घर कटे उनको भी चिन्हित करके उनको आपदा राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 5 दिन का उनको सुधार राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
1: किशनपुर अंचल के मोझा पंचायत स्थित पंचगछिया गांव में कटाव की सूचना पर जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों के बीच बाढ़ राहत सामग्री वितरित कराई। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, सामाजिक रूप से सम्मानित नागरिकों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है और इसके सफल आयोजन में सभी की सहभागिता जरूरी है। जिले में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान 2026 का शुभारंभ समाहरणालय परिसर से किया गया। इस अवसर पर तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा, तिरंगा रंगोली और वंदे मातरम गीत सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने उत्साह के साथ तिरंगे के साथ सहभागिता दर्ज कराई और प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राघोपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय परिसर में सोलर मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरद आरएस ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मेले में सोलर पैनल, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, सोलर लाइट सहित अन्य उपकरणों के स्टॉल लगाए गए। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया ताकि जिले में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। उप मुख्यमंत्री बीरेंद्र प्रसाद यादव ने बीरपुर हवाई अड्डे का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे का टेंडर हो चुका है और अगले 2 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के शुरू होने से कोशी क्षेत्र में हवाई यात्रा के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
3: इसका टेंडर हो गया है, एयरपोर्ट बन रहा है, 1.5-2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा।
1: और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा को लेकर सशस्त्र सीमा बल बीरपुर में मीडिया संवाद आयोजित किया गया। क्षेत्रक मुख्यालय पूर्णिया के उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा, तस्करी रोकने और सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी गई।
0: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रवि शंकर चौधरी।
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि

देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दे राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉ के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर

दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान

पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

0: तीनों से जुड़ल रहित कोनो व्यक्ति सब मिलकर समाज आ राष्ट्रक निर्माण करित राष्ट्र सुरक्षित तखने रह सकत जखन सब गोटे एकता के सूत्र में बांधल रही। राष्ट्रभक्ति के जगेबा में नाटक के सेहो बड्ड भूमिका रहल अछि, किएक तऽ एकर पूरा प्रभाव पड़ैत अछि। स्वतंत्रता पावे लेल, अमृत पावे लेल समुद्र मंथन कयल गेल। बलिदानी लोकनि कष्ट, पीड़ा, त्याग आ समर्पण सँ देश के आजादी दिएलनि। समुद्र मंथन सँ निकलल गेल विष आ अमृत, जाहि मे महादेव हलाहल विष पीब नीलकंठ भऽ गेला। असंसारक कल्याण के लेल ओ सदिखन लागल रहला, तैं देवाधिदेव महादेव कहेला। ठीक ओहिना गप करी वीर सेनानी लोकनि एहि गुलामी से जकरल एहि देश के, एहि राष्ट्र के मुक्ति दिएलनि। हुनक संकल्प, दृढ़ विश्वास आ अदम्य साहस के नमन अछि। गीतक माध्यमे सेहो अपना सबके अपना सबमे राष्ट्रभक्ति जगेबाक प्रयास कयल गेल, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध करायल गेल। गीतकार लोकनि अपन रचना सँ देश प्रेमक भावना जगौलनि। आब अपनो सब कार्यक्रम में गीत सुनब, राष्ट्र गीत सुनब, मुदा छोट छीन विराम लेला के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ, तो विरामक बाद श्रोतागण अहाँ सबके फिर स्वागत है। आ कहने छलो हैं जे एकटा राष्ट्र गीत सुनब, तो सुने छी कुंज बिहारी मिश्रक स्वर में ई गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, विराम से पहले श्रोतागण कुंज बिहारी मिश्रक स्वर में एक गीत सुनित रही। तो वास्तव में हम रही न रही राष्ट्र रहबाक चाही, मातृभूमि लेल बलिदानी लोकन हसैत हसैत अपन प्राण निहुँच दिलन। गोस्वामी तुलसीदास जी सेहो लिखने छथि, पराधीन सपने सुख नाही, जखन कष्ट पीड़ा बट बढ़ि जाइत अछि तखने ओहिसँ मुक्त हुए लेल व्याकुलता बढ़ि जाइत अछि। कतेको देशभक्तक दीर्घकालीन संघर्ष सँ प्राप्त भेल स्वतंत्रताक अमृत, ई अमृत पेबा लेल की नहि ओ कयलनि, हुनकर अपना सब ऋणी छी। वसुधैव कुटुम्बकम के जे ई भावना अछि, पूरा विश्व हमर सभक परिवार अछि, इएह भावना के संग जीवन के सब क्षेत्र में एक दोसरक सहयोगी बनि राष्ट्रक सेवा में सदिखन तत्पर रही, लागल रही। आब कार्यक्रम में एक गोट वार्ता सेहो सुनबाक अछि, जे राष्ट्रीय जागरण के राष्ट्रीय चेतना लेल कतेक पैघ काज सब कयल गेल, कतेक पैघ भूमिका रहल अछि एहि आज़ादी के पेवा में। तो सुने छी अपना सब ई वार्ता, विषय अछि मैथिली काव्य में राष्ट्रीय चेतना, वार्ताकार छथि डॉक्टर योगानंद झा। तो सुने छी ई वार्ता।
3: भारतवर्षक हेतु राष्ट्र शब्द कोनो नवीन नहि अछि। आदिकाले सँ एतय सम्पूर्ण भारतीय भूगोलक हेतु राष्ट्र शब्दक प्रयोग होइत रहल अछि। अनेकतामे एकता एहि राष्ट्रक वैशिष्ट रहल अछि। विविध जाति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि सँ समन्वित ई राष्ट्र एकमेव सांस्कृतिक सूत्र सँ परस्पर सन्नद्ध रहल अछि। एहिठाम अनेक राज्य अवश्य छल, सभक अपन अपन प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न भिन्न सेहो छलैक, मुदा ओहि व्यवस्थाक आधार श्रुति स्मृति पुराणक सिद्धांतक अनुरूप छलैक, जाहिसँ समस्त भारतीय समाज परस्पर आबद्ध छल।

कालक्रम में विभिन्न विदेशी आक्रांता द्वारा आक्रांत भेला पर एहि ठामक परिस्थिति में वैषम्य उपस्थित होइत रहलैक आ एकताक भाव छिन्न होइत गेलैक, सांस्कृतिक विकृति अबैत चल गेलैक। परिणाम ई भेलैक जे राष्ट्रीयताक भाव क्रमशः छिन्न होइत चल गेल, जनसामान्य अपन स्वरूपकेँ विस्मृत करैत चल गेल आ जुगान रूप अपन संरक्षणक प्रति प्रतिबद्ध होइत गेल। भारतवर्ष पर जे आक्रांता लोकनि विजय प्राप्त करैत गेलाह ताहिमे अधिकांश एतहि बसि गेलाह आ एहि संस्कृतिक अंग बनि गेलाह अथवा अपन पृथक संस्कृतिक संग एहि समाजक अंग बनि गेलाह। मुदा ईस्वी सन 1858 मे जखन भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादक अंग बनि गेल तखन एहि ठामक बौद्धिक व आध्यात्मिक जीवन पाश्चात्य सांस्कृतिक चेतनाक संस्पर्शसँ प्रभावित होमय लागल। क्रमशः भारतीय जनमानसमे नवचेतनाक बीज अंकुरित भेल आ दीर्घकालसँ सुप्त राष्ट्रमे नवचेतनाक लहरि आयल। भारतमे राष्ट्रीय चेतना की पुनर्जागरणक काल सिद्ध भेल जकर फलस्वरूप व्यापक आंदोलनक सूत्रपात भेल आ अंततः 1947 मे भारतके स्वतंत्रताक प्राप्ति भऽ सकलैक। कोनो विचारक स्फुरन, चिंतन, मनन व तदुपरि तकर प्रसारण बुद्धिजीवीय वर्ग द्वारा संभव छैक। स्वभावतः राष्ट्रीय चेतनाक जागरणमे समाजक विशिष्ट वर्ग कवि लोकनिक योगदान अप्रतिम रहलनि। मैथिली कवि लोकनि सेहो एहिसँ अछूत नहि रहला आ एहू भाषामे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रचनाक सङ्गहि राष्ट्रीय चेतना सम्पन्न काव्यक रचना होइत रहल अछि। आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रवर्तक चंदा झा 1857 क्रांतिक उपभोक्ता छलाह। ई क्रांति पूर्णतः धर्मरक्षाक भावना पर आधारित छल। चंदा झा सामंती राज दरबारमे जीविकापन्न छलाह जे ब्रिटिश शासनक विरुद्ध प्रत्यक्ष विरोध नहि कऽ सकैत छल, मुदा ओ विपरीत परिवेशमे रहितौं ब्रिटिश सरकारी व्यवस्थाक विरुद्ध काव्य रचना कऽ राष्ट्र चेतनाकेँ जागृत करबाक यथोचित प्रयास कयलनि। जथा ब्रिटिश सरकारक न्याय व्यवस्था पर चोट करैत ओ लिखलनि, न्यायक भवन कचहरी नाम सब अन्याय भरल तहिठाम, कविभन चंद्र कचहरी घूस सब सहमत ककरा के दूस। मैथिली काव्यमे राष्ट्रीय चेतनाक विवरणक तीन गोट प्रमुख आयाम अछि। प्रथमतः मातृभूमि वंदनाक लाथें राष्ट्र चिंतन, दोसर अतीतक गौरव स्मरण पूर्वक अपन विसरल आत्मसम्मानक प्रति उद्बोधन, तथा तेसर तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में व्याप्त हीनताक वर्णनके समग्र राष्ट्रक प्रति समर्पण भावक अभिव्यक्ति। चंदा झाक एक गोट भक्ति गीत में जानकीक वंदनाक लाथे भारतीय राष्ट्रक सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में व्याप्त क्षरणक वर्णन पूर्वक राष्ट्रीय चेतनाक उद्बोधन हेतु कहल गेल अछि। भारत दशा एहन बितैत अछि साधु कहावै चोर, पूर्वक धर्म कर्म सँ वर्जित धन अर्जित कुलबोर, जे कर धर्म सनातन रक्षा तनिका दंड कठोर, उत्तम अधम अधम अति उत्तम एहन काल अछि घोर। जदुनाथ झा जदुवर भारतक सुषमाक वर्णन करैत लिखने छथि, स्वर्ग सदिश सुखदायक सजनी सब विधि भारत देश, नंदन वन सन सुंदर सजनी मोहति देखि सुरेश। पंडित छेदी झा मधुप चरखा चौमासा लिख महात्मा गांधीक स्वदेशी आंदोलन में संग देवाक हेतु नारी लोकनि के जागृत कऽ राष्ट्रीय चेतनाक परिचय दैत कहलनि, पेख जेठ प्रकंड ज्वाला परम क्लेशक आगरी, त्याग मेला तीर्थ ठेला घर बैसु नागरी, बैसन व्यर्थ बिताविय चरखा चारु चलाविय। कविवर सीताराम झा, राजपंडित बलदेव मिश्र, मैथिली दधीच भोला लाल दास, राघवाचार्य शास्त्री, भुवनेश्वर सिंह भुवन, डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण, उपेंद्र ठाकुर मोहन, जयनारायण झा विनीत आदि कवि लोकनि युवा वर्गक उद्बोधन कऽ राष्ट्रीय चेतनाक जागरण में सन्नद्ध भेलाह। भोला लाल दासक युवक कविता में राष्ट्रक नवनिर्माण हेतु युवा शक्तिक क्षमताक बखान करैत कहल गेल अछि, भूमिकम्प छी प्रबल विश्व विप्लवकारी हम, छी अति प्रखर तरंग रूढ़ि गिरिरजकारी हम, दावा नल प्रज्वलित दासता छयकारी हम, झंझा नीलसम छी स्वतंत्रता रवकारी हम, अन्यायी सत्ताक छी प्रलय गगन सम अति विषम, हमरहि लघु हुंकार सँ महाप्रलय हो इच निगम। कवि चूड़ामणि मधुप तारा कविता में उत्प्रेक्षालंकारक माध्यमे सैन्य दलक अभिनंदन के राष्ट्रीय चेतने के जगयबाक प्रयत्न कयलनि। ओ लिखलनि, मातृभूमि वेदी पर दुष्टक हाथें जनिक भेल बलिदान, आई स्वर्ग में होइ तनिक की सुरकन्या संगे फलदान, हरियर साम्या नामे टांगल अछि तें बहुतो झाड़ फनूस, चतुरा

प्रकृति लेस ले लेन जे सह थी की ज्योति अदूस। भुवनेश्वर झा भुवनेश्वर परम प्रिय पावन तिरहुत देश अथवा जात्रीजी के सबसँ प्रिय निज देश आदि पंक्ति में मिथिले के अभ्यर्थना में राष्ट्रीय चेतना के भाव अभिव्यंजित भेल अछि। पछाति देश स्वतंत्र भेल मुदा समानता स्वतंत्रता ओ बंधुत्वक जे परिकल्पना जनता केने छल तकर प्रतिपूर्ति नहि भ सकलै। गरीबी अशिक्षा बीमारी शोषण उत्पीड़न अनाचार अत्याचार से जनसामान्य के स्वतंत्रता से मोह भंग भ गेलै। चीन आ पाकिस्तान अनेक बेर भारत पर युद्ध थोपी एकर अर्थव्यवस्था के चूरम चूर करित रहलै। राजनीति धनी ओ गरीब वर्गक बीच स्वार्थ व संतुलन बनाकर रखवा में अक्षम सिद्ध होइत रहल। परिणामतः कवि लोकनि भूख आ दुखे के मुख्य धारा काव्य विषय बनौलनि। तथापि अनेक कवि राष्ट्र चेतनाक जागरण प्रति सेहो सतर्क रहला। चीनी आक्रमणक संदर्भ में मणिपद्म राष्ट्रक रक्षा के हेतु जनसामान्य के ललकारा देत लिखलनि। सोना बेटा कटे युद्ध में तखन कौन सोना किर मोल, रे प्रताप जूझे हल्दी में भामा साह खजाना खोल। आए विश्व हरि केर स्वतंत्रता, मांग रहल हमरे सँ मोल, दही लेपिक माछ चटा दे उठ दधीच निज हड्डी तोल। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर 1962 चीनक संग युद्ध काल में युवा शक्तिक उद्बोधन करित राष्ट्रीय चेतना जगेबाक हेतु लिखलनि। आई उमक उमक बमक रहल बंकरा जवान, देत देश हेतु जान, मातृभूमि केर राखी लेल सान। ओ गुमान शत्रु सीमा पर फानी, आवि ठाड़ तोप तानी, चानी चूर चीन केर करब चूल्हि में चलान। केवल राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविताक संकलन थिक ध्वंस पर्व, जकर रचयिता थिका शिवाकांत पाठक। एहि संकलन में संकलित हिनक प्रत्येक कविता भाव ओ विचारक दृष्टिएँ प्रखर राष्ट्रवादक संपोषक अछि। तें राष्ट्रीय चेतना संपन्न संग्रह में ई स्वयं में अद्वितीय अछि। ध्वंस पर्व में राष्ट्राभिमानक रक्षा के हेतु जनसामान्य के तत्पर होयबाक आह्वान करैत लिखल गेल, चिर विजय हेतु अपश्यांत और गौरव लय गर्दनि मोल शून्य, राष्ट्राभिमान ध्वज नव चुम्बन लय ध्वंस एकटा पर्व पुण्य, रहिछ बुझैत आवाल वृद्ध जहि राष्ट्रक सेवर इच दिन दिन, तरुलता विहग माटिक कन में हिलकोर लैत रहिछ जौवन। तथापि मैथिली काव्य रचना में कवि लोकनिक जेहन अभिरुचि मिथिलाक महिमा वर्णन द्वारा राष्ट्र चेतनाक विज्ञापन में भेटैत अछि तकर अखिल भारतक प्रति अभाव बुझना जाइत अछि। एकरा राष्ट्रीय पटलक दृष्टिए शोभन नहि कहल जा सकैत अछि। नव तूरक कवि लोकनिकें मैथिली कविताक एहि अभाव दिस ध्यान आकृष्ट करब अपेक्षित बुझना जाइत अछि। तथापि श्री अमलेन्दु शेखर पाठक कृत जय भारती राष्ट्र देवता, मांगि रहल छथि कारगिल चूमी फांसी फान, राष्ट्र सुरक्षा मोक्ष केर नहि कामना, वीर भारत भूमिक संतान आदि कविता आश्वस्त करैत अछि। आचार्य सुमन जी मिथिला के भारतक लौह प्रतिमा कहने छथि। ओ कहलनि, चार चिकुर अछि जनिक हिमवतक वन हरितिमा, उर्माला कमलाक भरल स्वर्णांचल महिमा, दहिन गंडकी भुजा बाम कोसी असीम बल, हलधर अवनी अमर सिंधु जल धौत चरण तल, लघु प्रतिमा भारतक ई विधि शिल्पी कर कौशलें, वंदनीय रूपे रचल जनक जनपदक छवि छलें। अवश्य मिथिला भारतक लोक प्रतिमा थिक, तें मिथिलाक प्रति राष्ट्र चेतना गायन में सकल भारतीय राष्ट्रक प्रति राष्ट्रीय चेतना भावक अनुगायन भ जाइत अछि। मैथिली कवि लोकनि एकरे ध्येय बनौने छथि। आचार्य जयमंत मिश्र, रामचंद्र मिश्र मधुकर, सियाराम झा सरस, योग नारायण दास, रामलोचन ठाकुर आदि कविता में एहने परिदृश्य देखि पड़ैत अछि। तथापि किछु कवि एहनो छथि जे सम्प्रतियो अपन राष्ट्रीय चेतनाक अभिव्यक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के मोन पारि दिल करैत छथि, जथा विष्णुकांत मिश्रक मिथिला स्वतंत्रता आंदोलनक किछु पंक्ति द्रष्टव्य। करू नमन लेखनी ओहि कर्मवीर सबकें, त्यागी तपस्वी बलिदानी मातृभूमिक, मायक हाथ पैर में हथ करी बेरी, अंग्रेज छल लगौने गुलाम छल बनौने। सब किछु सही मुख मलिन नहि भेल ओहि वीर सभक, हँसैत हँसैत खैलन गोली मातृभूमि खातिर, धन्य धन्य ओ सपूत लोकनि आखिर हरदा बजाय, भगौलनि गोरा सबकें, करौलनि स्वतंत्र भारत माता के, लगौलनि नारा जय हिंद जय हिंद। जगदीश चंद्र ठाकुर अनिलक राष्ट्रीय चेतना मानसिक पवित्रता परोपकार ओ राष्ट्रभक्तिक परितः चकभौर देत देख पड़ित अछि।
चानन ठोप पाग।

0: अडुप्ता जप तप जोग ध्यान सभक ध्यान सो सुंदर लागे देशभक्ति केर गान एक ही मंदिर एक ही पूजा आ एक ही टा ध्यान एक ही मंत्र जपक जीवन भरी जय जय हिंदुस्तान। एतावता मैथिली काव्य में राष्ट्रीय चेतना मातृभूमि की वंदना और अतीतक गौरवक गाथक पुनः गायनक रूप में कवि लोकनिक अनुसंगी विषय रहलन अछि। अपन मूल रूप में राष्ट्रीय चेतना का अभिव्यक्ति सामाजिक यथार्थक चित्रणक रूप में आयल अछि जाहि में लोक कल्याणक भावना सन्निहित छैक। एहि कोटिक रचना लोक कल्याणक मार्ग प्रशस्त करबाक हेतु सुधार परक कामता सम्मित तयोपदेश मात्र बुझल जा सकैत अछि। मैथिली महाकाव्य दत्तवती मार्कण्डेय प्रवासी जीक अगस्त्यायनी दीनानाथ पाठक बंधुक चाणक्य बौआ जी झा अज्ञातक प्रतिज्ञा पांडव आदि महाकाव्य में सेहो राष्ट्रीय चेतनाक भाव जागृत करबाक प्रसंगक चित्रण होइत रहल अछि।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतागण, एहि विराम से पहिने वार्ता सुने छलहुँ मैथिली काव्य में राष्ट्रीय चेतना। वार्ताकार छलथि डॉक्टर योगानंद झा। तो वास्तव में अपना सबके जखन राष्ट्र के प्रति जे कर्तव्य अछि, ओहि कर्तव्य के प्रति सदिखन ओहि के प्रति हमरा सबके तत्पर रह पड़त, समर्पित रह पड़त। जना बलिदानी लोकनि अपन राष्ट्र के सुरक्षा के लेल अपन प्राण हसैत हसैत नुहिच देलनि। चिड़ै जखन पिंजरा में बंद रहैत अछि तखन सब तरहक सुख सुविधा रहितो मोन व्याकुल रहैत अछि। ओकर बाहरक आबो हवा आ पाँखि पसैर बिना कोनो विघ्न के आकाश में उड़बाक लेल आजादी केकरा प्रिय नहीं अछि। अपन माटि आ मातृभूमि लेल हसैत हसैत अपन प्राण नुहिच देलनि जेकर सब गोटे ऋणी छी। जे रचनाकार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने छला ओ अपन समय के दृश्य के नाटक में सेहो रूपांतरित कयलनि। एकर फेर मंचन सेहो कयलनि जेकर बड्ड बेसी प्रभाव लोक सब पर पड़ल। चाहे सकी राष्ट्रभक्ति के ओ काज केलक, सब में ओ भक्ति जे छै से पसरि गेल आ ओ पसरलै तखने अपन सभक देश जे ए से आजाद भेल आ अपना सब स्वतंत्र रूप से जीव रहल छी। तो आब कार्यक्रम में शब्द विमर्श करबाक परंपरा रहल अछि, मुदा एकटा आग्रह ई अछि जे कोनो प्रचलित शब्द जब बुझल हुए तब पत्रक वा ईमेल के माध्यम से अवश्य सूचित करी। शब्द विमर्श करबा से पहिने एक गोट इहो आग्रह अछि, कार्यक्रम केहन लगैत अछि अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। एहि के लेल तऽ पत्र लिखऽ पड़त आ कार्यक्रमक पता सेहो हमरा कहऽ पड़त। तऽ हमर सभक कार्यक्रमक पता अछि, कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ आब चलै छी शब्द विमर्श दिस। तऽ शब्द विमर्शमे अछि एकटा शब्द अबैत अछि निस्बद। ओह, कहू ने, केहन हिनका निंद भऽ गेलनि, एकदम निस्बद भऽ गेलखिन, किछु हिनका सुनैये नहि पड़ै छनि, कखन भोर भेलै उठैके नामे नहि लऽ रहल छथि। एकटा शब्द अछि निघटब। ओह, की कहू, अत्ते नीकसँ बनेने रहूँ आ सबटा निघटि गेल, किछु नहि बचल। एकटा शब्द अबैत अछि निपत्ता। एह, ई बौआके कखनसँ हम ताकि रहल छियनि जे पढ़ै लए बैसै लए कहलियनि से कतौ ई निपत्ता भऽ गेला जे अखन तक ई घर नहि अयला है। आ एकटा शब्द अबैत

0: निठूर तऽ कहै छै जे हे ई दूध कते निठूर छै, बड्ड शुद्ध दूध अछि। से एकरा जे छै से एकर जे आइ दही पौरलहुँ से दही बड्ड नीक भेल। आ एकटा शब्द अबैत अछि जे निहुँच देनाइ, माने समर्पित कऽ देनाइ, जे आब हम जे छै से जे काज कऽ रहल छी आब एकदम समर्पित भावसँ कऽ रहल छी, जे जाबे तक ई खूब नीकसँ नहि हैत ता धरि हम एकरा पूर्ण नहि बुझबै ताबे धरि। तऽ देखू श्रोतागण, आब जे छै से कार्यक्रममे जे छै से किछु आर बाँचल अछि, ओ अछि जाइत जाइत, किएक नहि एखन सावन मास अछि आ सावन मासमे जे बाबाके जे भक्ति अपना सब कऽ रहल छी तऽ श्रद्धा भक्तिसँ हुनका चाहे किछु चढ़ा दै छियनि, ओहीमे बाबा भोला छथि, ओ प्रसन्न भऽ जाइ छथि। फूल पात नहियो हुए, मात्र हुनका श्रद्धा भक्तिसँ हुनकर पूजा कऽ लियौन, ओहीमे ओ प्रसन्न भऽ जाइ छथि। तऽ जखन बाबाके नगरी बहुत गोटे जा रहल छथि सावन मासमे, तऽ देखै छियनि कतबो बरखा बुन्नी, कतबो विघ्न बाधा अबैत अछि, तैयो ओ चलिते रहै छथि, चलिते रहै छथि। जीवनमे इएह हमरा सबके सिखबैत अछि जे केहनो विषम परिस्थिति आबै मुदा हमरा सबके विचलित नहि हेबाक अछि। जेना एखन कंवरिया सब सावन मासमे एहन अटट रौदमे पैर जे छै से खुले पैरे ओ जा रहल छथि, कतेक तपस्या अछि। तऽ कोनो परिश्रम आ तपस्याके बिना अपना सबके फलके प्राप्ति नहि होइत अछि। आ इएह सीखै छी जे कर्मके पथ पर बढ़ैत रही। तऽ आब हमरा एहि कार्यक्रमसँ विदा लेबाक बेर भऽ गेल।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
3: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है इस विधेयक पर विचार किया जाए।
2: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान

0: प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
3: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
4: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
5: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
5: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता

0: मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य

महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्रिब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदादी बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दे दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदु किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो फख्र के साथ यौम आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा की जानिब से ट्राइब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को आज मंजूर किए जाने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन्स और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात नीज खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज़ पेश करता है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में कई अराकीन ने अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात उठाए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद सदर नशी ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा ने केरला तब्दीली नाम बिल 2026 को आज मंजूरी दे दी। ये बिल आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में करारदाद मंजूर की थी। बिल पर इजहार ख्याल करते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानून साज असम्बली की 2024 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई थी क्योंकि

0: गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तावुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तावुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी COP UOS के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत की तामीर का अहद करते हुए फख्र और शान के साथ यौम आजादी मनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए जना मोदी ने हर शहरी की साथ आने और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हौसला अफजाई की। इसके अलावा वजीर आजम ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
2: भारत माता की जय।
3: वंदे मातरम।
4: वंदे
3: मातरम।
4: वंदे
3: मातरम।
0: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीम शान तिरंगा रैली मुनक्कित की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातज़ा, साबिक फौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी के मामूलात पर असर पड़ा। पार्टी के वर्कर कल असेंबली मार्च के दौरान तलबा पर हुए मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा के एहतजाज को 18 दिन हो गए हैं और एहतजाज कर रहे तलबा JPSC और JSSC इम्तिहानात को मनसूख करने, CBI तहकीकात और भर्ती के अमल में इस्लाहात की अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा ताकि सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा सके। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों पर रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी इकतदार की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिस दिन पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी है। एहतजाज का सिलसिला 2 महीनों से जारी है और इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। मुजाहिरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर 60 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया है और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गोवा और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कल दोपहर से शाम तक कौमी राजधानी में कुछ मकामात पर बहुत हल्की बारिश के साथ साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। शदीद बारिश की वजह से चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब रियासत की 2 कौमी शाहराहों और 204 दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 24 घंटे के दौरान 5 अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पेशे नज़र इंतजामिया ने लोगों से दरियाओं से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड्स, शहरियत और पनाह गुजनी समेत इमिग्रेशन से मुतालिक मुतादिद फवायद हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को लाजमी बनाएगा। इस इकदाम का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल अखराजात को कम करना है। अमेरिका की शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात से मुतालिक महकमे ने कहा है कि एक हुक्म के मुताबिक ऐसे फॉर्म्स जो कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए दस्तयाब हैं उन्हें ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा। टेनिस में कनाडा ओपन 2026 में आज साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांटेक।

0: स्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। छह मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जुमेरात के रोज अब सेमीफाइनल में श्वांतिक का मुकाबला यूक्रेन की नवे दर्जे की खिलाड़ी एलिना स्वीतोलिना से होगा। स्वीतोलिना एक दीगर क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना एलेक्सेंद्रोवा को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आज क्वार्टर फाइनल में इटली के 19वें दर्जे के लुचानो दुर्देरी का मुकाबला अमेरिका के ब्रैंडन नकाशिमा से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निज़ाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज़ पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदाद बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टिमिस माहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह फख्र के साथ यौम आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव।

0: जनाब रिजवान अहमद जी, आप एक अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकार से भी आपका गहरा संबंध है, और इसलिए आज हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर बातचीत की उत्कट अभिलाषा से हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप ये बताएं कि हमारी सरकार जो आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में जो अमृत महोत्सव मना रही है, और इस अमृत महोत्सव को मना करके हम देश की आज़ादी, देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की सांस्कृतिक विरासत और जो अमूल्य धरोहर के रूप में है, हम सबको रेखांकित कर रहे हैं और इसके बारे में हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो मिला जुला करके एक हम ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, हम सब देशवासी भी कर रहे हैं, कि एक अमृत महोत्सव का आकार, वो प्रबंधन, वो व्यवस्था वो ले चुकी है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो स्टूडियो में बुलाने के लिए और ये महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में, और जिस तरीके से लोग परेशान हाल थे आज़ादी से पहले, ये गालिबन 200 साल का वक्त था जब अंग्रेज़ों के हाथों में मेरा मुल्क चला गया था और हम ग़ुलाम बन गए थे। तो माना जाए ऐसा कि जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो लोग अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे थे और तरह तरह के अपना गाना और गीत गा करके लोग अपने खुशियाँ को निछावर कर रहे थे कि आज मेरे मुल्क आज़ाद हो गया और हम लोग आज़ाद हो गए। आज़ादी के बारे में अगर देखा जाए तो कैद की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, अपने मर्ज़ी से बहुत सारा काम नहीं कर सकते थे। उसी तरीके से जब आज़ाद हुआ तो हमारे मुल्क में नित नए तरक्की का रास्ता हमवार होता चला गया और हर लोग चाहे कि अपने मुल्क को हम एक उड़ान दें, एक नई पहचान दें। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आज़ादी 1947 में मिली है, उसके जस्ट बाद अगर देखा जाए तो हर साल एक नई चीज़, एक नए फील्ड में, एक नए क्षेत्र में उपलब्धि होती चली गई है, चाहे वो ओलंपिक का खेल लें या फिर क्रिकेट का या फिर फुटबॉल का ले लें या हॉकी का ले लें या फिर एजुकेशन के मामले में लेते हैं, तो हर साल एक नई चीज़ ईजाद होती है, एक नई

0: बात सामने आती है जिससे हमारे आने वाले लोगों के लिए और जो खास करके युवा वर्ग की जो पीढ़ी अभी चल रही है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। पूरी चीज़ के हम लिस्ट गिनाएंगे कि क्या क्या उपलब्धि आई थी, कितने हम लोग पिछड़े थे आज़ादी के साथ, कितने आगे हम लोग बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन।
1: कुछ हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। जो हमने उपलब्धियाँ हासिल की हैं इनके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप आम आवाम को इस संदर्भ में भी जानकारी दें। जो पहले हम आगे बढ़े हैं विकास के क्षेत्र में, और चहुमुखी विकास हुआ है, बहुमुखी विकास हुआ है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, तो उसकी ओर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा आप प्रकाश डालें, थोड़ी रोशनी डालें आप।
0: हमने ये बताया था कि जैसे 1948 में अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो लंदन में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर देखते हैं दूसरे साल मुथप्पा बेली IAS इम्तिहान पास करने वाली पहली महिला बनी थी। चूंकि ये आज़ादी से पहले कोई महिला ऐसा काम नहीं की थी, ये पहला शरह जो जाता है वो मुथप्पा बेली अप्पा जो IAS इम्तिहान पास की थी। जबकि उसके जस्ट बाद संविधान सभा से 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारत 1991 में एशियन गेम्स के पहले संस्करण की मेज़बानी की। 1952 की बात करते हैं तो पहली बार भारत में चुनाव हुआ था जिसमें लगभग 17 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और वोट दिए। फ्लैग केयर इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन एयरलाइंस को 1953 में स्थापित किया गया। 1854 में ट्राम्बे में एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बना। 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर HEC-2M को कोलकाता में लगाया गया। 1956 में भारतीय हॉकी टीम ने मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 1957 में भारतीय सह इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत और एशिया की पहली महिला बनी। 1968 की बात करें तो IIT की स्थापना उसी साल हुई। सत्यजीत रॉ की आपूर्ति संसार ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। भारत ने 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों की पहली बैठक का नेतृत्व किया। 1962 में भारतीय फुटबॉल टीम ने सबसे ऊंची रैंक हासिल की। 1964 में पहली बार भारतीय जेट ट्रेनर HJT-16 ने उड़ान भरी। 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1967 में पंडित रविशंकर ने भारत के लिए पहला ग्रेमी अवार्ड जीता। भारत के डॉक्टर प्रफुल्ल सेन 1968 में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले डॉक्टर थे। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 1975 में भारत को उसका पहला उपग्रह आर्यभट्ट मिला। 1976 में बंधुआ मजदूर की प्रथा खत्म हुई। 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म हुआ। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को वैध ठहराया। 1980 में स्मॉल पॉक्स की बीमारी से निमटने के लिए टीकाकरण की शुरुआत की। 1981 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी पहली दवा तैयार किया। 1982 में एशियन गेम्स की मेज़बानी की। 1983 में भारतीय टीम ने लंदन में वर्ल्ड कप जीता। 1985 में भारत फास्टर ब्रेडर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला छठा देश बना। 1986 में 10वीं एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक PT उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीते। 1987 में सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 1988 में इसरो ने एशिया की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च किया। 1989 में केरल का कोट्टायम भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। 1960 में कुवैत और ईरान से 1,10,000 भारतीयों को भारत सरकार ने सुरक्षित निकाला, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट माना जाता है। 1993 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को छठा स्थान दिया। 1993 में फिल्मकार सत्यजीत रे ने ऑस्कर जीता। 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 1995 में भारतीयों ने इंटरनेट पर पहली बार लॉग इन किया। खेल जगत की बात की जाए तो भारतीय टीम ने हर साल अपना सिक्का जमाया है और अपनी पहचान बनाई है। अगर सभी खेलों का अलग अलग चर्चा की जाए तो समय दरकार होगा। 1996 की बात की जाए तुली एंड रिप्स ने ओलंपिक में कांस्य

0: पदक जीता। उनका ये पदक 44 साल में भारत का पहला पदक था। 2000 में विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता। 2001 में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी। 2004 में आरटीआई आई। 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2010 में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। 2013 में मंगलयान ने मंगल ग्रह पर चक्कर लगाया। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। 2016 में भारत ने महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच को ट्रेनिंग दी गई। भारत ने 3 अगस्त 2016 को GST बिल पास किया और उसके साथ ही भारत नित नए विकास की ओर अग्रसर है।
1: रिजवान जी, आपने एक तरह से कही कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ यानी 1947 से लेकर के अब तक जो हमने जिन जिन बड़ी छोटी बड़ी सभी उपलब्धियों को रेखांकित किया है, आपने उनकी विस्तृत रूप से आपने चर्चा की और हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है हमारा मुल्क विश्व रंगमंच पर और विश्व के मानचित्र पर काफ़ी अहम है और हम समझते हैं कि बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी हमारे मुल्क का सम्मान करती हैं, पूरा विश्व हमारे मुल्क का सम्मान करता है। आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृत का काम ही है, मतलब कि वो एक अमृत सिंचन करना, वो अमृतत्व प्रदान करना, वो बेहतरी एक सकारात्मक इसका रुख है। तो ये हमारा मुल्क जो है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वो एक गुलदस्ता की मानिंद है जिसमें तरह तरह के फूल पुष्पित पल्लवित और फलवित हैं और सभी अपने अपने रंग से अपनी अपनी खूबियों से खुशबुओं से सबको मुअत्तर किए हुए हैं। हमारा मुल्क जो है बिल्कुल गुलजार है और हरा भरा है और इसी तरह से ये हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ता रहे। बहुत विविधताएं हैं हमारे देश में, इन विविधताओं के मध्य जो हमारी जो चट्टानी एकता है वही हमारी शक्ति है, वही हमारी ताकत है। इस शक्ति को और ताकत को बनाए रखना हमारी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। रिजवान जी, आप आए और बड़ी अच्छी जानकारी आपने इस संदर्भ में दी, अमृत महोत्सव की हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और रिजवान जी, आप आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, अपना महत्वपूर्ण समय भी आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप हिंदी वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था आज़ादी का अमृत महोत्सव। वार्ताकार थे रिजवान। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

लीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

0: हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले।
2: प्रगति तखने भ सकैया जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

role of library as a promoter of education. वार्ताकार थे तरुण कुमार मिश्र. प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया.

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों।
2: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
3: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
4: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जी सी चंद्रशेखर जी।
5: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
4: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, देन फर्स्ट सप्लीमेंट्री जी सी चंद्रशेखर जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी।
6: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफशोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
5: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
7: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी।

0: ऐलान करता है। इसराइल सोलर पावर को विन एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है। अध्यक्ष महोदय, चौथा है दस कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे हो, इसे जुड़ी कई कंस्टिट्यूएंसीज सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और पोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है। इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी,
2: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट आदरणीय मिलन प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
1: Honorable Minister,
0: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये जो प्रश्न है आपसे भिन्नता है और इसलिए इससे संबंधित नहीं है।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं उदित नारायण।

उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ आज के एक फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धरती कहे पुकार पुकार के गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, बोल मजरूल सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म परोसन का यह गीत सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज में शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का है।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए
1: फिल्म पाकीजा का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरूल सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशन गुलाम मोहम्मद का है।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: लेगा तो
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का

0: नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म विश्वास का यह गीत। गायक कलाकार हैं मुकेश, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

0: मुकेश के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।